0: 89.6. 89.6.
1: It's hot.

चाल बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा।

हाय शर्मीली वावा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

की बैटिंग वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारत नाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। 89.6
1: मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

देखिए बचपन से हमारे दिमाग की ट्यूनिंग ही कुछ इस तरह से थी कि संडे है, चिल कर लेते हैं, और जैसे कतर आ गया है तो संडे को लेकर इतनी कंफ्यूजन होती है कि अरे नहीं, हेलो बॉस, ये नया हफ्ता शुरू हो चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिंपली आफ्टरीन, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। और सिंपली आफ्टरीन सिंपल सा ख्याल आपके सामने हमेशा लेकर आती है, पर डायरेक्ट बिल से कि इट्स अ ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू वीक, एंड फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हमें इसके साथ कोई ब्रांड न्यू पर्सनैलिटी भी लॉन्च करनी चाहिए। वैसे हम हैं, वही लाइफ है, बस कैलेंडर का पेज यहाँ पर फ्रेश होते रहता है हमेशा। तो संडे मॉर्निंग को अननेसेसरली सीरियस नहीं बनाते ना, कॉफ़ी या चाय जो भी आपके हाथ में है उसको एंजॉय करो, जिसके साथ भी आपने दिन की शुरुआत की है, जो पेंडिंग काम है हफ्ते के वो धीरे धीरे देख लेंगे, वीक अभी अभी तो आया है, पहले उसको सेटल तो होने दो। और जबरदस्त कंपनी और एंटरटेनमेंट के लिए मैं हूं ना यहाँ पर 89.6 FM पर, सिंपली आफ्टरनून, माइक से दिल तक आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहती है। ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La virva la murga. Milci, murga.
1: हेलो हेलो
2: बेटा नवनीत।
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माई शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज में दिन की शुरुआत राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, दिस इज योर सिंपली आफ्रीन राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक, और मेरे ख्याल से मौसम भी थोड़ा सा अलग अलग सा है, नया नया सा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, हाउ कैन यू बिगिन अ डे विदाउट नॉट लुकिंग एट द वेदर अपडेट्स, राइट? तो बस आज का वेदर ये कहता है 41 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर माय फ्रेंड्स, 33 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। हालांकि मेरे ख्याल से शाम के वक्त इट्स बिकम क्वाइट प्लेजेंट, वी कुड से 65% ह्यूमिडिटी है, हवाएं कुछ काम की नहीं है, चल नहीं रही है इतनी खास, लेकिन ऑल इन ऑल मैं उस दिन का रादर इंतजार कर रही हूँ जब मैं दिन के वक्त लाइक 11-12 बजे के वक्त मीना पोर्ट पर यानी अपने दोहा पोर्ट पर जाकर बैठ पाऊँ। माई गॉड, आई एम मिसिंग दोज डेज टेरिबली, एंड आई थिंक सो आई गॉट अ वेट अनदर 1-1.5 मंथ फॉर दैट। मीन वाइल वी कैन से लौटे हो, फ्रेश लौटे हो, या फिर और भी थक कर लौटे हो कि भाई बहुत कुछ कर लिया। भाई दो दिन में हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर लेते हैं, एक साथ सारी चीज़ें, दो दिन में हम 4 दिन की जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसी कुछ हाल रहा, या फिर आपने बिल्कुल ही आराम से दो दिन अच्छा खासा रेस्ट किया। लेट मी नो, 5000 1896 इज माई नंबर। गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग भी कर लेंगे, और यहाँ पर सारे जो गुड मॉर्निंग है उन्हें भी रिप्लाई कर लेती हूँ। चलिए, आलीशान को कहते हैं गुड मॉर्निंग यहाँ पर, देन हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, इन्होंने भी गुड मॉर्निंग कहा है। मंगेश का मैसेज है गुड मॉर्निंग जी, एंड इमरान का मैसेज है गुड मॉर्निंग टू माई फेवरेट आरजे आफरीन, थैंक यू सो मच ट्यूनिंग इन टू योर शो राइट नाउ, एंड यू आर एब्सोल्युटली किलिंग इट दिस मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, दिस इज वॉट गिव्स मी माई डोज ऑफ एनर्जी। सो वेल, 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीन वाइल जर्सी मूवी से ये गाना, जहां मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन दिस सॉन्ग सचिन टंडन की आवाज में इज क्वाइट ब्यूटिफुल। एंजॉय इट ऑन दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में द सॉन्ग फ्रॉम आर probably most of ours best movie है ना, favorite movie रहना है तेरे दिल में का title track. यार किसको नहीं पसंद थी ये movie. I think so this movie had hardly any haters that time. लेकिन अगर इसकी कहानी अभी सोचने समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी जगह पर red flag तो नजर आते हैं यार. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और सीधा बॉलीवुड से निकल के कतर में लेकर आती हूँ आपको. और कतर की बात करें तो देखो, ये नॉर्मली स्ट्रीट्स यानी रास्ते का काम क्या होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना. बट कतर में समटाइम्स द स्ट्रीट इटसेल्फ इज द डेस्टिनेशन. थिंक अबाउट इट ना, जैसे मीना डिस्ट्रिक्ट का दोहा पोर्ट हो गया है. क्या ब्यूटीफुल गॉर्जियस पेस्टल कलर बिल्डिंग्स है वहाँ पर, कलरफुल लिटिल रेन्स. एंड देन वी हैव द क्रिस्टल वॉक एट गिवान आइलैंड्स, जहां पर क्रिस्टल एंड आर्ट एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द वॉकिंग एक्सपीरियंस वहां पर. एंड देन हाउ कैन वी फॉरगेट 21 हाई स्ट्रीट एट कतारा. लग्जरी स्टोर्स है वहां पर, कैफेज है, रेस्टोरेंट्स है. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट भाई, वहां पर आउटडोर एयर कंडीशनिंग है वहां की स्ट्रीट्स पर भी. सो वेल, जहां पर इतनी सारी चीजें मैंने कतर की हमारी खूबसूरत जगहों की बात की है, देयर इज नाउ वन मोर addition to this list, a new address which we could add, and that is now the Baraha town jo Abu Hamur mein hai. And this one is being promoted for its colorful pastel streets. Colorful pastel streets to hamare Qatar ka ek bahut khoobsurat hissa hai hi, lekin ye shaded hai, ye climate controlled hai, walkways hai, cafes, dining, shopping and everything beautiful which is going to make the walking experience out there more lovely. And you know what, according to the announcement, it is being introduced as Qatar's largest outdoor cooled walkways. Yes, मतलब हमें इतने सारे options और मिल गए हैं कि भाई गर्मी हो कुछ भी हो, we can still have outdoor walk, and this one being the largest. तो बस देखिए, एक और अब addition हमने add कर लिया है यहाँ पर Qatar के बहुत ही wonderful destinations में से. So मैं हूँ आफरीन आपके साथ, इसी तरह से Qatar की बातें लेकर आती रहूंगी. Meanwhile, अभिषेक बच्चन और सुनिधि चौहान की आवाज में दिस फैंटास्टिक ट्रैक ऑन विच यू इट्स हॉट. To my player, it tastes deep with big props to Piggy Chops and Chuck Master Sippy. My crew, the Blockbuster Movie, and those hip hop fakers, Vishal and Shaker. Here we go.

0: Bollywood Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन,
2: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
3: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
1: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood Bolda. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

आयुष्मान खुराना की आवाज में विकी डोनर का ये गाना और ब्यूटीफुल ट्रैक या पानीदार रंग, और जहाँ पानी की बात करते हैं ये गाने में, तो बस अब मुझे बारिश की याद आ गई है। और इत्तेफाक की बात ये भी है कि आज शायद कतर में बारिश का मूड हो सकता है। वेल, कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने 5th और 6th सितंबर के लिए कुछ खास एरियाज में रेन की पॉसिबिलिटी फोरकास्ट की है। सो वेल, आज बीइंग 6th, सो रियली एक्सपेक्टिंग सम रेन समवेयर, बिकॉज यार बहुत गर्मी हो गई बहुत टाइम से, थोड़ी सी बारिश होगी तो मजा आ जाएगा। वेल, जहाँ पर बारिश की बात अब छिड़ी गई है ना, सो लेट मी टेल यू, बारिश का नाम सुनते ही ना मेरे अंदर का ओल्ड स्कूल बॉलीवुड मूड ऑन हो जाता है। रियली, लाइक बॉलीवुड में ऑफकोर्स देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स ऑन बारिश, बरसात एंड सो मेनी थिंग्स, लेकिन जब भी बारिश होती है ना मुझे यही गाना याद आता है। अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी, एंड यू नो व्हाट आई लव अबाउट दिस सॉन्ग, कि यहाँ पर ना देयर इज नो एलैबोरेट कोरियोग्राफी, नो ड्रामेटिक रेन सीक्वेंस, बस दो लोग मुंबई की सड़कों पर चल रहे हैं, भीग रहे हैं, बारिश को एक्चुअली इंजॉय कर रहे हैं, एंड मे बी दैट्स व्हाई इवन आफ्टर ऑल दीज इयर्स दिस सॉन्ग फॉर बारिश फील सो रियल, है ना। वैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब एक्चुअली बारिश होती है ना तो वो कौन सा गाना होता है कि जो आपको सुनना पसंद आता है, जैसे हाथ में चाय हो, बाहर बारिश की बूंदे है। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग ऑनेस्टली, जितनी ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे शायद बारिश हो जाए, वाई नॉट। लेट मी नो योर प्ले लिस्ट सॉन्ग नंबर बारिश के मौसम में, 5000186 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मीन वाइल चलिए आज के ज़माने वाला बारिश का गाना सुन लेते हैं, दैट इज ऐश किंग और शाशा तिरुपति की आवाज़ में। Enjoy it on Metro, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती, क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होठों पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन ज़बरदस्त गाने लाइंड अप है, आगे बहुत सारी खबरें लाइंड अप है, एंड यस ऑफ कोर्स बातों का सिलसिला, गेम्स वगैरह ये सब तो चलते रहेगा। पहले मिर्ची घड़ी का इशारा देख ले, 7:01 की तरफ हो रहा है और अगला गाना शामक दावर की आवाज़ में 90s इंडी पॉप से डायरेक्टली कमिंग टू यू राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है।

शामक दावर की आवाज राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी जगह पर रहते हैं और इतनी आदी हो जाते हैं ना वो जगह के कि वहाँ पर के कन्वीनियंस कंफर्ट जो है ये हम नोटिस करना ना छोड़ देते हैं। अब कतर की ही बात कर लें, यहाँ के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एवरी डे सर्विसेज हम बस यूज़ करते हैं, कभी कभार ओकेजनली कंप्लेन भी कर लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन। बट देन एक ग्लोबल रैंकिंग ऐसी आती है and actually it makes you look at your city a little differently. देखिए खबर कुछ ऐसी है that according to the 2026 Legatim Prosperity Index, Qatar has ranked fourth in the world for standard of living and not just that my friends, Qatar is number one in the entire MENA region. अब perspective की बात बताऊं तो कतर से आगे जो तीन कंट्रीज हैं वो नॉर्वे, सिंगापुर एंड लग्जमबर्ग है। वाओ। एंड व्हेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन ये सारे फैक्टर्स को अगर साथ में लिया जाए तो गेट टुगेदर अंडर द डेवलपमेंट इंडेक्स तब कतर स्टैंड्स 8th ग्लोबली। एंड अब मुझे लगता है ना एज अ रेसिडेंट समटाइम्स स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा हमारे वो एवरीडे मोमेंट्स जो है ना वो मैटर करती हैं। द लिटिल एक्सपीरियंस जिस तरह से हम लेट नाइट ड्राइव कहीं पर भी कर सकते हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली सेफ, वो क्लीन सड़कें, वो कन्वीनियंस ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट एनीवेयर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का मसला होता नहीं है, है ना। द पार्क्स, द सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, द स्पेसेस जहाँ पर वी एंजॉय विद आवर फैमिलीज, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो डेली लाइफ में शायद हम नोटिस भी नहीं करते हैं एंड देन रैंकिंग लाइक दिस कम्स अलॉन्ग एंड रिमाइंड्स यू कि दीज लिटिल थिंग्स डेफिनेटली एड अप। और इसलिए तो कतर फोर्थ इन द वर्ल्ड है फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Now that is a ranking worth celebrating. Mike se dil tak aafreen hai aapke saath right here on Mitri. It's hot.

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
3: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो, कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े।
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े।
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: बोले
3: श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा
3: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah. Live

उदित नारायण और एल के याग्निक की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची अवार्ड अ तड़का दिस मॉर्निंग। भाई 90s का गाना था ही, लेकिन ऐसा गाना जिसमें इतनी नखरे इतनी अदाए, ऑफ कोर्स हैज टू बी भाई हमारी माधुरी दीक्षित थी इस गाने में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और थोड़ा सा जब 90s का गाना लगा है ना, तो मुझे मेरे 90s के दिन याद आ रहे हैं, और 90s के दिन यानी स्कूल के दिन। अब अपने टाइम पर स्कूल में कितने किस्म किस्म के पनिशमेंट्स मिलते थे ना टीचर से। एक तो कॉमन था मुर्गा बनो, ठीक है, क्लास के बाहर इधर खड़े रह जाओ, या फिर नील डाउन, रेज योर हैंड एंड नील डाउन। एंड सच में यार नील सच में बहुत दुखते थे नीज जब ऐसे करने पर। हाँ हाँ, मुझे भी मिली है पनिशमेंट, ऐसे क्यों नहीं, नहीं मार वाली पनिशमेंट वैसे कभी नहीं मिली, लेकिन हाँ बॉयज वगैरह को क्लासेस में मैंने देखा है कि वो पड़ जाती थी हाथ पर बॉय मार। वेल पनिशमेंट के इतने तरीके रहते थे टीचर्स के, कभी कभी बुक्स में जब छोटे ग्रेड्स में थे तो बुक्स में 100 times लिखो आई विल नॉट डू दिस और आई विल नॉट टॉक इन द क्लास, और सच में हाथ भी दर्द करते थे। बट कमिंग टू टुडे, सो मेनी ईयर्स डाउन द लेन, 20-30 years डाउन द लेन, पढ़ाने का तरीका बदल गया है, पनिशमेंट के तरीके बदल गए हैं, एंड इनफैक्ट आई वुड से कि पनिशमेंट अब कुछ ही दिन में डिक्शनरी से ये वर्ड ही गायब होने वाला है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है अ बैन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट पनिशमेंट। येस यू हर्ड इट राइट, दे हैव ऑफिशियली बैंड दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ स्टूडेंट पनिशमेंट, जैसे फोकस एंड फोकसिंग इंस्टेड ऑन अ पॉजिटिव सपोर्टिव लर्निंग environment, and it's a step towards nurturing respectful, motivated and confident students. और देखिए अब ये नए generation है, ये नए लोग हैं, इनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। शायद ऐसा होता है कि ये punishment देने से ये और दूर हो जाते हैं, ये और demotivated feel करते हैं, and education after all, education should be for upliftment and not for punishment. तो बस क्या आपको लगता है ये सही है, या फिर एक हल्की सी हल्का सा डर तो रहना ही चाहिए। भाई अब भी कहूँ कि मुझे ना मेरे साइंस टीचर से खौफ था, बहुत डरती थी मैं उनसे, एंड आई एम श्योर आप भी ना कोई एक ऐसी टीचर होते ही होंगे जिससे आप बहुत डरा करते थे, और मैथ्स और साइंस टीचर्स का ना ऐसा खौफ रहता ही था स्कूल में, है ना। चलिए गानों का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाज में ये गाना माइक से दिल तक आफ्टरनून के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs!
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
3: The show was absolutely amazing.
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: वेल शालमली कोलकड़ी की आवाज, मुरली ठाकुर का साथ और ये गाना ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मूवी याद है आपको? मूवी शायद नहीं याद होगी, लेकिन मैं हूं ना यूर फ्रेंड्स, वाई नॉट। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड दिस वाज फ्रॉम द मूवी अय्या। अब अय्या मूवी थी एक ऐसी, कुछ याद है आपको? वो भी नहीं याद है। अरे रानी मुखर्जी की मूवी थी, एंड डेफिनेटली कोई मूवी याद रखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अमित त्रिवेदी के गाने इसमें कुछ अच्छे अच्छे, मतलब यार सेंसलेस गानों को किस तरह से यू कैन मेक म्यूजिकली साउंड गुड, दैट इज वॉट अमित त्रिवेदी डिड बेस्ट। जैसे ये एक गाना था अगवाई, एंड देन आई ऑल्सो रिमेंबर दैट ड्रीमम वेकअपम समथिंग लाइक दैट, कुछ तो अजीब से लिरिक्स, एंड आई जस्ट इन्जॉयड द बीट्स एंड द वाइब ऑफ द सॉन्ग, एंड अब आई एम श्योर अब आपको याद आया रहेगा। येस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। ऐसे आफरीन आपके सामने अलग अलग गाने लेकर आती रहती है जो आप शायद बिल्कुल भूल ही गए हो काफी अरसों में, है ना। सो विद दिस नाउ इज द टाइम जहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग भी लेकर आती है आफरीन जो आप शायद भूल गए हो या फिर आपको बहुत ही अच्छे से याद हो। वेल इट्स टाइम फॉर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, और आज कौन से मूवी से सीन है ये तो बस आप ही मुझे बताओगे, ठीक है। सो हियर इट गोज,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: ये आपके कैसे?
3: ये तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर?
0: ओके
2: एक सेकंड।
0: ऑल राइट, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मुझे प्ले करना चाहिए कुछ, क्योंकि दिस इज अ वेरी आइकॉनिक मूवी और इसके हर सीन मेरे ख्याल से याद रहते हैं। कौन सी सीन था ये? और बहुत ही मजेदार सीन था ये। 5000196 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, एंड आई डोंट नीड टू गिव हिंट्स ऑल्सो बिकॉज मैसेजेस आर जस्ट फ्लडिंग। देख रहे हो, समझ रहे हो, नॉट अ पॉपुलर सीन, हार्डली मैंने आपको 4-5 सेकेंड सुनाया एंड यू कुड गेस इट। वाओ, तुसे ग्रेट हो। चलिए कविता सेठ और कनिष सेठ की आवाज में ये गाना एंजॉय करो, तब तक के लिए मैं इन लोगों को रिप्लाई करती हूँ। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।
4: रंग

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
5: The Mentalist Suhani Shah live.

0: वेल व्हाट अ सॉन्ग यार, खुशबू और रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गाना इज डेफिनेटली अ बैंगर. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइटर अनमिर्ची मॉर्निंग्स. और कभी कभार ना क्या होता है कि एकदम इजी पीजी सी मूवी भी मैं आपको दूँ और उसका ना अगर 3 से 5 सेकंड, इट्स नॉट अबाउट इजी मूवीज. वेल बात हो रही है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट किया, पहले बता दो जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं पाएंगे. तो येस वी आर प्लेइंग लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, जहाँ पर मैं सीन सुनाती हूँ और आपने गेस करना होता है कि आखिर ये कौन सी मूवी से है. सो येस, कुछ मूवीज इतनी आइकॉनिक होती है ना कि उसका 3-5 सेकंड ही काफी होता है टू नो दैट विच मूवी इज दिस. सो ऐसे ही ऐसा एक मैंने एक सीन सुनाया था. कौन सा है, लेट्स हियर इट राइट हियर. कहां गया? हाँ,
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
0: वेल, मेरा सीन हो गया है गायब, तो आपको तरना पड़ेगा थोड़ा इंतजार. कभी कभार होता है ना, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो होता है वो हमें कहीं ना कहीं धोखा दे देता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी. सो आई विल कम बैक इन सम टाइम, लेकिन आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा बिकॉज यर आफरीन इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग. सो यू गॉट टू वेट. आई थिंक सो आई फाउंड इट. 1 second. Let's have the lights, camera, scene test again.
1: Lights, camera, scene test.
2: ये आपके कैसे?
3: ये तो मेरे students. ये यहाँ क्या कर?
0: All right. So ये जो scene था, जो गायब हो गया था कहाँ? पता नहीं. And I got it again at the right time. So कौन सा scene है ये? You just had to hear 5 seconds of this and you knew what it is. So let's hear our jawab here. Hello.
4: Hi, good morning.
0: Good morning.
4: This is Rashid.
0: Hi, Rashid.
4: And this movie name is Three Idiot.
0: Okay.
4: And this scene is wedding scene.
0: Okay. That is right.
5: Good morning, Afreen. This is Kumar Pandey and it's Gangs. Movie ka naam hai Three Idiot, Amir Khan aur Kareena Kapoor. Thank you. It's hot.
0: That is absolutely right. And I have a lot of messages today. Let me tell you, Faraz ka message just aaya hai. Lekhnath ka message aaya hai. Then I have Trisha messaging us. Then I have, who is this? Apna naam likha karo. Dhruv Dhingra. Inhone bhi message kiya hai. Jitin Vyas, Sanjeeva, Rashid, Astrid, Saddam Hussein. Then Dheeraj ka message hai. Upendra Sharma ka message hai. Magesh ka message hai. Oh my God, the list is just a big list. Mohammad Yusuf Khan ka message hai. Akhtar ka message hai. Charlie is here. Mohsin and yes, I think so. I'm done. Yes, Mohsin and with this Kuwar Pandey, बहुत सारे लोग हैं. किसी का नाम अगर मिस हो गया तो I'm super sorry because नाम आप लोग लिखते नहीं हो. मुस्तफा का भी मैसेज है. सो थ्री इडियट्स का ये सीन था जहाँ पर शादी में जाते हैं वो लोग अनइनवाइटेड, आमिर खान एंड हमारे माधवन एंड शर्मन एंड देर इज करीना कपूर एंड बोमन ईरानी. व्हाट अ हिलेरियस सीन यार. डेमो चाहिए? डेमो याद आया कुछ? जिंदगी में ना कुछ लोगों को कुछ समझाने के लिए ना डेमो जरूरी होता है. ये बाबा रणछोड़ दास कहते हैं. सूरज जागन और शर्मन जोशी की आवाज में दिस सॉन्ग इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर. एंजॉय इट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
1: and earn Qatar Airways Avios today.
0: Visit our branches or download the app now.
2: महमूद और राघव चैतन्य की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2 सोना कितना सोना है. यस आई गॉट इट राइट. देखो गोल्ड का प्लान हो या ना हो, ये स्मार्ट हैबिट ना हमेशा साथ रहनी चाहिए और वो है कीपिंग एन आई ऑन द गोल्ड रेट.
3: गोल्ड अपडेट.
2: वेल तो आज है टुडेज पैम्प गोल्ड रेट्स जो इस तरह से है. 1 ग्राम पैम्प गोल्ड रेट इज 593 कतरीरियाल, वही 5 ग्राम इज फॉर 2784 कतरीरियाल, 10 ग्राम इज फॉर 5498 कतरीरियाल, 1 ounce इज फॉर 16998 कतरीरियाल एंड 10 तोला इज फॉर 63129 कतरीरियाल. एंड अपना गोल्डन रूल है, सोना लेना हो या ना लेना हो लेकिन सोने का भाव हमेशा पता होना चाहिए एंड वो भी अल फरदान का. राइट, मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक और मैं चीज़ हूँ.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiutba la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: कहाँ करा तो नहीं हो गया
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकुलुकु
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
2: कुकुलुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
7: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live

ऐसे पाछा इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

Well, that was Mita Roar और Swara Verma की आवाज में Gen Z का ये गाना right here on Mirchi. और देखो वक्त के साथ में ना अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. अब वो गाने ही क्यों ना हो या फिर एक्सचेंज रेट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तो वक्त के साथ बदलते रहता है हर दिन. जैसे आज का एक्सचेंज रेट कह रहा है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 25.90, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.16. बांग्लादेशी टका की बात करें तो इट इज एट 33.67. श्रीलंकन रुपीस इज एट 90.06 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.33. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, दैट इज 89.6 मिर्ची 1 पर आफरीन के साथ इट्स हॉट.

0: देखो थैंक यू तो बनता है ऑफ कोर्स, जब इतना खूबसूरत गाना मैं बजाऊं जो आप इतने अरसों बाद सुन रहे हो एंड यू हैव गॉट लॉस्ट इनटू इट, जुबिन की आवाज़ है तो ऑफ कोर्स लॉस्ट तो हो ही जाएंगे। तो यार आफरीन के लिए एक थैंक यू तो बनता है कि नहीं है? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स अ न्यू वीक, ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू मंथ। सितंबर के महीने में हम एंटर करके ऑलरेडी 6 दिन हो गए हैं और वेल आज तो मैं कुछ एकदम ही नया लेकर आई हूँ।
1: गुड मॉर्निंग।
0: यस, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में कुछ इस तरह से है कि आज ना मेरे जो रेगुलर फॉर्मेट से मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ऐसे किया है लेकिन बहुत दिन से मैंने ना लाइव आपसे बात नहीं की है। सो आज का कुछ गेम ऐसा है कि मैं यहाँ पर एक लाइव कॉलर लेने वाली हूँ, ठीक है? और उनको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से गेम करने वाली हूँ कि मैं जैसे यहाँ पर एक एक्टर का नाम और उनका प्रोफेशन बताऊंगी, आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी में इस तरह से इन्होंने प्रोफेशन निभाया था। जैसे शाहरुख खान एज अ हॉकी कोच, तो आप कहोगे चक दे इंडिया। तो फिर मैं कहूंगी करीना कपूर एज अ डॉक्टर, तो थ्री इडियट्स इस तरह से। ये तो बहुत इजी पीजी है, मैं आपको अच्छे खासे सवाल लेकर आई हूँ। 30 सेकेंड्स में बहुत सारे आपको आंसर्स देने हैं, कौन फटाफट से बहुत सारे गेसेस करता है, ठीक है? दिस इज द गेम। नाउ वेर यू हैव टू कॉल इज, दैट इज द कैच, आपको कॉल करना है 4432-1896 पर। मेरा नंबर है 4432-1896 टू प्ले दिस गेम विथ मी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तब तक के लिए अलीशा चेन्नई की आवाज में ये अगला गाना।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: रेडी
7: रेडी
6: टू लर्न?
7: यस।
6: टू प्ले?
7: एब्सोल्युटली।
6: टू ग्रो?
7: विद मेजराती।
8: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स।
7: मिल्क, चीज, योगर्ट,
8: from breakfast to lunch box and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
9: Bollywood Boldal.
10: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
11: Only on Mirchi. It's hot.
1: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
12: उदित नारायण, आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर, बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर। एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स, मेकिंग एवरीबडी लाफ।
1: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
10: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
11: Only on Mirchi, it's hot.
13: The show was absolutely amazing.
14: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह,

0: 89.6 FM पर आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड हम खेल रहे हैं मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, जहां पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में एक हमारे पास लिसनर है जिनका नाम है हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक आपका नाम
1: यूसुफ
0: यूसुफ जी आर यू रेडी टू प्ले द ग्रे गेम जहां पर आपको मैक्सिमम गेस लेने हैं कि ये एक्टर ये किरदार कौन सी मूवी में कर रहा है ठीक है ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ विद्या बालन एज अ रेडियो जॉकी
1: सुल्लू तुम्हारी सुल्लू
0: ओके शाहरुख खान एज नासा साइंटिस्ट
1: स्वदेश
0: ऑल राइट रणवीर कपूर एज अ वीडियोग्राफर
1: बैंड बाजा बाराती
0: रानी मुखर्जी एज अ स्कूल टीचर नाइस ऋतिक रोशन एज अ मैथ्स टीचर
1: सुपर कैटी
0: वाव रणवीर सिंह एज अ रैपर
1: ये रानी रॉकर रानी
0: टाइम अप ओके आई गिव यू दिस इसमें से पांच छह में से आपने पांच सही बताया एक आपने गलत बताया जहां रणवीर कपूर एज अ वीडियोग्राफर इट वॉज नॉट हाँ जी रणवीर सिंह नहीं थे बिल्कुल मैं समझ गई सो वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी एंड बहुत ही मजा आया आपके साथ खेल के
1: और थैंक
0: यू फॉर ट्यूनिंग इन टू अस डेली चलिए हैव अ लवली डे चलिए बाय बाय तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ खान जो हमारे साथ ये आज का गेम खेल रहे थे और इसी तरह से आफरीन कोशिश करेगी कि हफ्ते में एटलीस्ट दो से तीन बार आपके साथ लाइव आकर ये गेम खेले वैसे बताइए आपने यहाँ पर साथ साथ खेला तो कितने आपने गेस किए छः के छः पूरे किए या आपके पास है वो कि मैं नहीं आफरीन आई कैन बी दिस छः से ज़्यादा हम गेस कर सकते हैं देन ड्रॉप इन अ मैसेज एट 5000196 व्हाट्सएप पर कि हम भी ये गेम खेलना चाहते हैं आफरीन मीनवाइल अरिजीत सिंह और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में यह लगाना आपका इंतजार कर रहा है अनमिर्ची इट्स हॉट

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरे बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: Well, Mirchi Mornings पर आफरीन जुड़ गई है आपके साथ. So, well, it is exactly 9 o'clock in Mirchi घड़ी और अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. ये मुंबई की लड़की से, मुंबई वाला गाना यानी महाराष्ट्र से संजू राठौड़ की आवाज में, just reminding me of मुंबई. And always जब भी ये गाना बजता है तो मुझे ऐसा है, सच में पाव भाजी, वड़ा पाव, सब कुछ याद आता है और मुंबई की बारिश भी याद आती है और मन करता है कि बस अब चली जाओ. क्या आपको भी ऐसे ही होता है क्या?
0: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

Well, 25 million services in 6 months. These are all huge numbers, hai na? Lekin kis cheez ke hai ye? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और ये जो बड़े आंकड़े मैंने सुनाया आपको 25 मिलियन एंड ऑल, ये हमारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं. यस, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन के लेटेस्ट नंबर्स आर आउट एंड इन जस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2026 HMC डिलीवर्ड 25 मिलियन हेल्थ केयर सर्विसेज. नाउ दैट्स अ वोपिंग फिगर. वेल, दैट इंक्लूड्स अराउंड 1.5 मिलियन आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट्स, 40,000 सर्जरीज, 700,000 इमरजेंसी cases and even 50,000 home visits. But mere liye sabse interesting number ye hai, the average waiting time for a first specialist appointment jo pehle 58 days tha, ab wo seedha 16 days par aa gaya hai. Aur HMC ka eventual target hai ab isko 14 days karna. And they have done this through things like evening clinics, two shift operations and working with private hospitals to manage some cases. Plus healthcare is becoming more digital too, hai na, through the Labai app. If I'm right pronunciating, it's LBAIH. ये app के through patients का access का जो है अब services और बढ़ जाती है. Appointment management कर सकते हैं उसके through. Medical information मिल सकती है. काफी सारे नए features है. Access to radiology reports है. So 25 million is definitely an impressive number. But perhaps the more important story is what happens behind that number. Shorter waits, easier access and a healthcare system जो सबके लिए बिल्कुल smooth और आसान बनाने की कोशिश कर रहा है. And that is our HMC. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, right here on Mirchi Mornings. Mic से दिल तक, it's hot.

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. हेलो हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
1: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
1: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
1: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
1: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
2: क्या हुआ अंकल?
1: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
1: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं
1: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन
1: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
1: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
1: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
1: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फा डॉन एक्सचेंज,
6: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फा डॉन एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777।
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
10: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Strawberry Banana Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good. Pizza partner Papa John's. Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
11: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Al Wakra, Al Meshaf and Barwa City. Kim's

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: What a beautiful song KS Chitra की आवाज में, right here on Mirchi. और पता है क्या, कोई अगर हमसे पूछता है ना कि यार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, तो हमारा जवाब कितना सिंपल रहता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बस चल रहा है. लेकिन इसी जवाब को, इसी सवाल का थोड़ा सा ऐसा जवाब दिया जाए दिल खोल के, और अगर मेरे अंदाज में बताऊं तो मेरी डायरी से बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी पोएट्री मुझे मिली है, और पता नहीं क्यों इसे पढ़ते हुए लगता है कि ज़िंदगी का आधा हिस्सा हो गया और आधा खूबसूरत सा भी बाकी है. तो यहाँ पर ये अर्ज किया है
1: आफरीन की डायरी से शायरी, शायरी.
0: कि कोई पूछे अगर कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो कहना कुछ रास्ते तय किए हैं, कुछ सफर अभी बाकी है, कुछ यादें छूट गई, कुछ काम मिलना अभी बाकी है, कुछ सीख लिया है शायद, कुछ ठहराव अभी बाकी है, कुछ अपने बस का कर लिया है, कुछ अपने बस का कर लिया है, कुछ ऊपर वाले पर छोड़ना अभी बाकी है, कुछ पन्ने जिंदगी ने लिख दिए हैं, कुछ कहानी अभी बाकी है, और जो हाथ थाम यहां तक लाया है उस ऊपर वाले की इनायत का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी है. हाउ ब्यूटिफुल, एंड आई विश दिस द सेम फॉर एवरीवन लिसनिंग टू मी. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The mentalist Suhani Shah.

This song truly represents that India ki diversity mein sach mein kitni khoobsurati hai. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून को आप सुन रहे हो. और जब इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें तो भाई कितनी सारी चीजों में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज में, कपड़ों में, खाने पीने में, एंड देन द म्यूजिकल डाइवर्सिटी इज वन अनदर सेक्शन है पूरी एंटायरली. जहां म्यूजिक के बारे में बात करें, राजस्थानी फोक सॉन्ग से ये मामे खान की आवाज में आपने चौधरी का कुक स्टूडियो वर्जन सुना है, एंड वेल ऐसे ही कई सारे गाने होते हैं बॉलीवुड कहीं ना कहीं कोई कोई मूवीज में कोई स्टेट सॉन्ग्स, कोई रीजनल सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता है. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो होता था ना, ये 90s 2000 के एरा में ज्यादा होता था, अर्ली 2000 एंड ऑल. आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, एंड आई थिंक सो इट्स द नीड ऑफ द आवर कि आप ना इस तरह से जो फोक सॉन्ग्स हैं, अब भले ही वो कई नॉर्थ के हो, पंजाब का बहुत टच होता है वैसे बॉलीवुड में, लेकिन हम ईस्ट के कोई आसामी गाना हो कुछ, उसका भी एक टच जरूर सुनना चाहेंगे. और अगर मुझे ऐसा कोई गाना मिलता है ना जिसकी झलक बॉलीवुड में है, सो आई विल श्योरली सर्च इट एंड प्ले इट हियर फॉर यू. मीनवाइल जहां पर हमने रीजनल म्यूजिक के बारे में बात की, रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात की, टच दिया है, और जैसे मैंने कहा कि पंजाबी का तो बहुत होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साउथ का भी एक इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन बहुत कम है. इसका भी हम कोशिश करेंगे यार कि कहीं से ना कहीं से मैं ढूंढ के लाऊं और आपको सुनाऊं, और ज्यादा इन्फ्लुएंस होना चाहिए इस तरह से. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडिया आई से. सो पंजाबी के बारे में बात किया तो दिलजीत दोसांझ के लाइक नाम के अलावा यार आई थिंक सो इट्स जस्ट इनकम्प्लीट कि पंजाबी म्यूजिक हो. सो हियर इट इज. जाते जाते एक कुड़ी दिलजीत बाजी की आवाज में, दिस कुड़ी इज टेलिंग टाटा बाय बाय सायोनारा. कल मिलेंगे फिर से सेम टाइम सेम शो. अपना ख्याल रखिएगा, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयरलॉर्ड को बोलो, एयरलॉर्ड, ठीक है?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

यार मेरी और नींद की ये साझेदारी आखिरकार कब होगी ये मुझे सच में नहीं पता। मिर्ची अंशु नहीं, मैंने ये टर्म सुना है ऑर्गेनिक क्लॉक कि एक पॉइंट के बाद हर रोज आप जितने बजे उठते हैं आपका माइंड बाय डिफॉल्ट आपको उस वक्त उठा ही देता है। लेकिन ना मेरी कहानी काफी उल्टी है। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। नए हफ्ते की शुरुआत आपके साथ मिलकर करने वाली हूँ। यार मुझे एक बात बताओ कि आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि वीक डेज में ये नींद जो है ये जाती नहीं है, वीकेंड में आती नहीं? कोई बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं, कोई ऑर्गेनिक क्लॉक नहीं जो मुझे वीक डेज में उठा सके। हाँ, जब तक अलार्म को मैं 3 बार स्नूज पे ना डालू ना तब तक मैं नहीं उठ सकती। लेकिन वीकेंड में ऑर्गेनिकली ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एक्टिवेट होता है एंड बिना किसी अलार्म के मुझे सुबह सुबह ठीक 4:30 बजे उठा जाता है। क्या आपकी कहानी मेरी कहानी से मिलती है? तो मुझे बताना जरूर। 5000 1896 eagerly waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चाहे नींद कैसी भी आए लेकिन एक बात तय है कि जब सुकून भरी नींद रातों में आती है ना तो यार दिल जो है सुकून में दिन भर जरूर रहता है। इस बात को जरा गौर फरमाना। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirci, burka.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
3: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: मैं तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: तू चोरी करने के लिए गया?
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया यहाँ पे
2: ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: एक बात सुन,
2: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है,
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: फिंगर टिप, ये टर्म आपने सब सुना होगा, हमने तो इसे लाइव एक्सपीरियंस किया है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे भैया कौन जाएगा वहाँ, इतनी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, इतने देर खड़ा होना पड़ता है। अब जो है ना, ये सारे सवाल सारे झंझट हमारी जिंदगी से काफी हद तक दूर हो चुके हैं। फिंगर टिप्स में सर्विसेज जो हैं वो डेफिनेटली अवेलेबल है। पर अगर कतर में कोई चीज है जिसने हमारी आंखों के सामने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है तो वो है डिजिटाइजेशन। मतलब लिटरली ना जाने कितनी गवर्नमेंट सर्विसेज अब हमारी फिंगर टिप्स में अवेलेबल हैं। और इसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अगर सबसे यूजफुल एग्जांपल कोई है तो वो है मेट्राश। एक ऐसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन जहां अब इसके लिए कहां जाना पड़ेगा वाला सवाल जो है ना घर में कई बार आता ही नहीं। जरा सोचिए, अगर मैं माइनर ट्रैफिक एक्सीडेंट रिपोर्ट करने की बात करूं या व्हीकल ओनरशिप को ट्रांसफर करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस आपका रिन्यू करना हो, कहां जाना है? अरे मेट्राश में जाना है। फैमिली विजिट वीजा हो, फैमिली रेसिडेंस के लिए अप्लाई करना हो, रिटर्न वीजा रिक्वेस्ट करनी हो या वीजा एप्लीकेशन या एक्सटेंशन को ट्रैक करना हो, अब इसके लिए किसी को फोन लगाकर कोई लॉबिंग की जरूरत नहीं, मेट्राश है ना। इनफैक्ट अगर आपकी गाड़ी की बात करूं, जिंदगी नामक गाड़ी तो अच्छे से चल रही है, लेकिन आपकी व्हीकल रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स चाहिए, किसी फैमिली मेंबर या दूसरे पर्सन को ऑथराइज करना है या अपने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ई वॉलेट में रखना है, ये सारा काम मेट्राश आपकी जिंदगी में फिंगर टिप्स में करता है। तो एक याद दिलाया कि अगर बेसिक सिर्फ अपनी कतर आईडी निकालने के लिए आज तक मेट्राश को यूज करते आए हो ना, तो जरा एक्सप्लोर करो, बैठे बिठाए काफी सारे काम जो है ना तुम्हारे बची जाएंगे, घर पे किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़ेगा। स्टेडियम टू मर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
0: The mentalist Suhani Shah.

0: देखो तुम खुद भी आना एंड साथ अपनी घर वाली को भी जरूर लेकर आना। पक्की बात है, एक पंत दो काज जो है ना यहाँ पे हो ही जाना है।
1: मिर्ची अंशु।
0: जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बस यही है कि वाइफ्स को अक्सर लगता है कि उनके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानती हैं, एंड हस्बैंड्स को बस यही लगता है कि काश तुम समझ पाती कि मेरे दिमाग में चल रहा है तो क्या ही चल रहा है। अब दोनों के मसले हैं ना, ये हल करने का मेरे पास एक तरीका है एंड 101% है। तारीख याद रखो 25th of September। जगह भी बता रही हूँ, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। भाई साहब, एक ऐसी बंदी को मैं लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मैरिज की काउंसलिंग भी कर देगी एंड किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सच सच बताकर तुम्हारी जिंदगी में राहत और सुकून जरूर लेकर आएगी। जब दुनिया की सबसे सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की मैं बात करूं, मैजिशियन की बात करूं, तो उसमें नाम आता है सुहानी शाह का। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक पंथ दो काज जो है ना वो हो ही जाना है। एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ ही दिमाग की सारी बातें बाहर आ ही जाएंगी। फटाफट से जाएं क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट या स्नो सिटी पर एंड अपनी टिकट्स जो है वो बुक करके आएं। एक ऐसा इवेंट जिसे आप किसी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। कतर की हिस्ट्री में पहली बार आपके इंतजार में। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: देखो एक ही बात कहना चाहूंगी, ये जो सर्कल है ना, इसे बड़ा सोच समझ के सेलेक्ट करना, वरना जिंदगी भर बस चक्कर ही लगाते रह जाओगे।
1: मिर्ची अंशु।
0: वो कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड सर्कल जो है कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अक्सर जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इसीलिए तो जिन लोगों जैसा बनना चाहो, दोस्त यारी भी जो है बस उसी हिसाब से किया करो। या लेकिन सच कहूं, सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ हंसने गाने का नाम नहीं यार, ये तो वो रिश्ता है जो कहीं ना कहीं हमें और बेहतर बना सके। दोस्त वो हो जो आपकी कामयाबी से खुश हो, आपकी उड़ान को और ऊंचा देखना चाहे, दुनिया के सामने आपकी ढाल बने लेकिन जब बात आपकी हो ना तो आपके सामने आपका आईना बने। लेकिन हाँ, दोस्त वो भी हो जो उसके नंबर आपसे कम आने पर कभी ना कभी आपसे खुद नाराज हो जाए। वेल, दोस्ती जो है ना जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है यार, एंड इस पे मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ। मेरी जीत में जो मुझसे ज्यादा मुस्कुराए, मेरी भूल पे जो मुझे आईना दिखाए, दुनिया से लड़ जाए जो मेरे नाम पर, अरे दोस्त वही जो मुझे मुझसे बेहतर बनाए। एक बात बताओ, किस दोस्त का नाम याद आया ये सुनकर? ऐसी कोई दोस्ती है जिंदगी में? 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची आंशु। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

हॉट है। ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: यार देखो एक ही बात बोलूंगी कि जिस दिन तुम्हें अवार्ड मिल जाए ना दोस्त, उस दिन ये ना भूलना कि इस अवार्ड के पीछे तुम्हारा सिर्फ अच्छा काम नहीं बल्कि मेरा रिमाइंडर भी था।
1: मिर्ची अंशु
0: ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के अलावा हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई छाप छोड़ ही गए हैं, क्यों ना? आपने जब हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां बिखेरी हैं तो आपके अच्छे काम का रिकग्निशन हम भी जरा कर ही लें। अरे नाना, ये मेरी जुबान ही सिर्फ किसी और की कहानी है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कतर टूरिज्म अवार्ड्स 2026। एब्सोल्युटली जितने भी अच्छे काम आपने किए हैं कतर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए, ट्रैवल को काफी फीजिबल बनाने के लिए या कतर की खूबसूरत कहानी देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अब उस काम को हाईलाइट करने की बारी आ ही चुकी है। कतर टूरिज्म अवार्ड्स में आपके सबमिशन की फाइनल डेट है 15th of September। उसके बाद जो है कोई भी एंट्रीज एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। तो जाइए वेबसाइट एक्सप्लोर करिए एंड जस्ट जिस डोमेन में आप फिट बैठते हैं अपनी एंट्री जो है पक्का लगा ही दीजिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर अवार्ड्स जो है आपके खाते में आने वाला है, जरूर आने वाला है। जब मिलेगा मिलके सेलिब्रेट करेंगे। आपकी मेहनत और मेरा रिमाइंडर दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet vala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो हाँ बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकुड़ुकु
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
1: कुकुड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: यार इस वक्त ना मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: देखो माना कि ये जरूरी है, लेकिन एक दूसरी बात और भी ज्यादा जरूरी है। मुझे ना इस वक्त अगर कोई दिन याद आते हैं तो वो है मेरे बचपन के, अपने स्कूल के दिन। क्या कमाल के दिन थे यार। स्कूल में पढ़ाई भी की, डांट भी खाए, लेकिन उससे ज्यादा मस्ती की, मजे किए। स्कूल से घर आते थे, मम्मी की डांट खाते थे, एंड सीधा अगर कहीं भागना है तो ट्यूशन, ट्यूशन में पढ़ाई, फन, मस्ती, सब कुछ। लेकिन लौट के आने के बाद मजाल कोई कह सके कि फिर से पढ़ने बैठो? भाई बैग एक कोने में रखा एंड सीधा कहीं गए तो अपने दोस्तों की पलटन के साथ, एंड उसके बाद घर की तरफ लौट कर तभी आना है जब पापा की बैट जो है ना हमें बुलाने आ जाए। क्या दिन थे यार। जब आज की जनरेशन इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है जमाना एंड दौर कितना कंपैरेटिव हो चुका है। कितना लोड है यार, पढ़ना भी है, ये एक्टिविटी भी करना है, ये भी सीखना है, एआई एंड व्हाट नॉट। देखो माना कि दौर जो है बदल गया है, लेकिन बचपन और बचपना वो तो हर एक शख्स की जिंदगी में एक ही बार आता है ना यार। जितने भी पेरेंट्स इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है ना, एक ही बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की जिंदगी को उनके करियर के चलते संवारना है, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये बात नहीं भूलना है यार कि कहीं उनका बचपना ना खो जाए। उन्हें खेलने दीजिए, अपने बचपन के दिनों को दिल से जीने दीजिए, जैसे हमने जिया है। अपनी मंजिल तक पहुंच गए ना तो पढ़ाना लिखाना जरूरी है, लेकिन बचपन को बचपन रहने देना और भी ज्यादा जरूरी है। सोचिएगा जरूर। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: देखो, आंखों से जादू के बारे में तो मैंने सुना था, ये बातों से जादू ये कब से होने लगा? मिर्ची अंशु यार, सच कह रही हूँ, ये बात जो है ना 101% तय है कि ये गाना इसी के लिए बना है।
1: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन।
0: भाई साहब, इतना बता दूं, इसकी नजर जो है ये जरूर एक जादूगरनी की है, बदन का मुझे पता नहीं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त अगर मैं किसी की बात कर रही हूँ तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट एंड मजिशियन यानी कि सुहानी शाह। भाई, अपनी नजरों से जिस तरह का जादू करती है, अपनी बातों में फंसा कर जिस तरह से आपका जादू बाहर निकालती है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपको आपसे ज्यादा समझती है। जितने राज आपके अंदर छुपे हैं ना, उसे बाहर निकालना बहुत अच्छी तरह से जानती। वेल, सच कह रही हूँ, ऐसे इवेंट्स के बारे में हम जब जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है भाई ये कैसे होता होगा, क्या ही होता होगा। तो चलिए, इस मैजिक को लाइव विटनेस करने का वक्त जो है वो आ चला है। सुहानी शाह लाइव इन कतर, 25th of September एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे आप किसी हाल मिस नहीं करना चाहेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए प्लैटिनम लिस्ट पर या तो फिर क्यू टिकट्स स्नूनू सिटी, अपनी टिकट्स को फटाफट से जाकर बुक करें। इस वक्त भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे। एंड सुहानी का इवेंट, भाई ये ना देखा तो फिर क्या ही देखा, जाओ जल्दी टिकट्स बुक करो। बाकी आपकी बातें जो है सुहानी से हम निकलवाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।
2: राइट।

देखो हमारी जिंदगी में तो इनका हिसाब किताब बस यही कहता है कि कब आई और कब गई, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आने के बाद ही जरा ठहर गई तो ये बात ध्यान से सुनना। अरे सैलरी की बात कर रही हूँ। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आईपी मनी में 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.90, पाकिस्तानी रुपीज 76.16, बांग्लादेशी टका 33.67, नेपाली रुपीज 41.33 एंड इसके साथ ही लंकन रुपीज 90.06। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल स्टेडियम टू कतर्स नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pierd bala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू
2: अतुल. वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: मतलब क्या परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: लगे कोई गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: चिलो शालो,
1: चिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
2: बोले कुकड़ू को. बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ
2: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
4: रेडी,
5: रेडी
4: टू लर्न,
5: यस
4: टू प्ले,
5: एब्सोल्युटली
4: टू ग्रो
5: विद मेजराती.
4: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
4: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
6: The show was absolutely amazing.
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: गोल्ड अपडेट।
1: यार पता है क्या, गोल्ड की ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे फैशन बदले, ट्रेंड्स आए और जाएं, लेकिन इसकी चमक वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल हो ही नहीं सकती। तो जरा देखिए कि आज मार्केट में गोल्ड कितना चमक रहा है। अल्फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट अपडेट्स में अगर आज आप खरीदना चाहेंगे पैंप 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार, सो दस प्राइस एट कतरी रियाल्स 593, 5 ग्राम्स एट 2784 कतरी रियाल्स, 10 ग्राम्स एट 5498 कतरी रियाल्स एंड साथ ही 1 ounce एट कतरी रियाल्स 16998। एंड इसके साथ ही अगर आज आप 10 तोला सोना लेना चाहेंगे सो दस प्राइस एट कतरी रियाल्स 63129। तो जाएं जरा अपने अलमीरा की चमक बढ़ा के आएं। स्टडी यूट्यूबर शीप बंदी का नाम।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। माय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: किसने कहा कि इस काम को पूरा करने में पूरे एक हफ्ते लगेंगे?
1: मिर्ची अंशु
0: क्या कभी नोटिस किया है कि अगर किसी काम को पूरा करने के लिए एक हफ्ता मिले तो somehow एक हफ्ता लग ही जाता है, लेकिन अगर कोई कहे भाई एक घंटे में काम जो है ना पूरा हो जाना चाहिए, तो अचानक से फोकस भी आता है, स्पीड भी आती है और काम हो ही जाता है। अरे नाना, ये तुम्हारे पति की गलती नहीं और ना ही तुम्हारी फितरत है, इससे तो हम एक लॉ कहते हैं, नाम है पार्किंसंस लॉ। 1955 में ब्रिटिश राइटर एंड हिस्टोरियन नॉर्थकोट पार्किंसन ने इसे डिवाइस किया, एंड इसका आइडिया बड़ा ही सिंपल, काम उतना ही फैलता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। यानी कि अगर वार्डरोब साफ करने के लिए फ्राइडे रखा है तो पूरा फ्राइडे लग ही जाएगा, लेकिन अगर घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, डेडलाइन एक घंटे की है, तो वार्डरोब क्या, जरा देखो पूरा घर कैसे साफ होता है। तो शायद हर बार हमें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, कभी कभी हमें बस एक अच्छी सी डरावनी सी वार्निंग देती हुई डेडलाइन की जरूरत है। आजमा के देखिए घर पे और अपनी जिंदगी में भी। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: अरे इतना तो एलवी की बैग लेते वक्त नहीं सोचा, आप क्या सोच रहे हो?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हम और हमारी मेंटालिटी जो है ना, ये बड़ी कमाल है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाकर हम कभी डिस्काउंट की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि बार्गेन वहाँ होता नहीं है ना। लेकिन हाँ, वो सब्जी मंडी में जाकर जब तक 10 रियाल की चीज को 8 रियाल में ना लाए ना, तब तक खाना हजम हो तो कैसे हो, है ना। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, अवार्ड शोज में जाने के लिए हमारे पास बटुए में पूरे पैसे हैं, लेकिन भैया पता चल जाए हमारे देश में अगर कुछ हो रहा है तो कहीं से कुछ तो डिस्काउंट मिले, नहीं तो मुफ्त में टिकट मिल जाए। जिसके पास जितने ज्यादा पैसे, आज की डेट में सबसे ज्यादा फ्री में टिकट वही मांगता है गुरु। नहीं, हमारा तो बस यही एक्सपीरियंस है। यार अगर हर एक जिंदगी के अच्छे एक्सपीरियंसेस फ्री में मिलने लगे तो उन चीज़ों की वैल्यू हो तो कैसे हो। तो इतना ही कहना चाहूंगी, अगर दिल से किसी इवेंट को अटेंड करने का मन है, जाना चाहते हैं, तो क्यों ना यार, जैसे बाकी चीजों में खर्च करते हैं, यहां पर भी आगे आए, बढ़कर टिकट लें। वेल, सुहानी शाह लाइव इन कतर, एक ऐसी मेंटलिस्ट जिसे देखने के लिए न जाने दुनिया में कितने लोग बेकरार हैं। भैया वो कतर आ रही है 25 सितंबर को एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। इतना ही कहना चाहूंगी, ऐसे मैजिकल इवेंट्स का एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता, तो जब मिल रहा है तो क्यों ना आप और हम मिलकर इस इवेंट का हिस्सा बने एंड दिल से एंजॉय करें। क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट स्नूनू सिटी, हर जगह पर टिकट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। कुछ अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, इसके बाद कोई ऑफर नहीं आने वाला, कोई फ्री टिकट नहीं मिलने वाली। जाइए अपनी टिकट्स को रिजर्व करके आइए, बाकी आप और हम मिलकर मंत्रमुग्ध होंगे फिर 25 सितंबर को। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
2: मेरे कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का। एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
1: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: देखो बाकी बातें बाद में करेक्ट करना, जरा बेसिक्स पे तो इस वक्त ध्यान दे दो।
1: मिर्ची अंशु
0: अगर कतर में अपनी समस्या की बात करूं तो एक प्रॉब्लम जो मुझे अक्सर याद आती है, एंड सिर्फ यही याद आती है, वो है झड़ते हुए बाल। नहीं, ये मेरी कहानी नहीं है, मेरे सही सलामत है, उम्मीद है बस आगे भी ऐसे ही रहें। मैं तो जेनेरिक प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। भाई साहब, माना कि पानी एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रीजन है, लेकिन दूसरी वजह शायद आप भी हैं। न जाने कितने तेल जो है आपने ट्राई किए, बहुत सारे शैम्पू कंडीशनर भी अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट किए, लेकिन क्या बेसिक्स पे कभी नजर डाला, यानी कि अपने खान पान पे? अगर हम बालों को देखने की कोशिश करें, हमारे बाल अगर कुछ है ना मैक्सिमम, सो दैट इज प्रोटीन यानी कि केराटीन, तो इसका ट्रीटमेंट कराने जो आप बाहर जाते हैं उसके पहले उसे अपनी बॉडी में अडॉप्ट करें। वेल, आपकी डाइट चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर इस वक्त कुछ है तो वो है प्रॉपर प्रोटीन, प्रोटीन रिच फूड। सेकेंड, मिनरल्स की अगर मैं बात करूं, विटामिंस की बात करूं, जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये सारे के सारे आपके लेवल्स जो है ना वो एक्यूरेट होने चाहिए। एंड इसके अलावा विटामिन डी एंड विटामिन B12 की डिफिशियंसी भी हेयर लॉस का एक प्रोमिनेंट रीजन हो सकती है। तो देखिए, दूसरे जो स्ट्रेस वाली बातें हैं वो इस वक्त मैं नहीं करना चाहती, वो अपने झमेले जो है तुम खुद संभालो, लेकिन हाँ, खान पान से जुड़ी हुई जो हिदायतें हैं मैंने तुम्हारे आगे पेश कर दी है। तो अगर बाल की समस्या तुम्हारी जिंदगी में काफी हद तक तुम्हें कंट्रोल कर चुकी है तो अपने खान पान को कंट्रोल करो, और उसके बाद मुझे बताओ कि रिजल्ट निकला तो कैसे निकला। वैसे अगर कहीं जा रहे हो, कोई अच्छा तेल मिले तो मेरे लिए भी लेते आना हेयर ऑयल। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती। oh, no. क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: भाई इस फिल्म में ना तो कोई टिपिकल विलन था और ना ही कोई परफेक्ट हीरो।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और कसम से 20 साल पहले जब ये फिल्म आई थी ना, तो इसको बहुत सारा बैकलैश मिला था। इनफैक्ट करण जौहर, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, ही वॉज रियली रियली डिप्रेस्ड आफ्टर द रिस्पॉन्स दैट ही गॉट फ्रॉम द पीपल। मैं बात कर रही हूँ साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना के बारे में, जिसने उस वक्त एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछा था कि क्या शादी निभाना ही हमेशा प्यार निभाना होता है। एंड लाइक आई सेड, साल 2006 में इस सवाल ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, डिबेट्स हुए, क्रिटिसाइज किया गया इस फिल्म को। लेकिन 20 साल बाद जब हम कैंक को देखते हैं तो लगता है कि यार फिल्म सिर्फ इनफिडेलिटी की स्टोरी नहीं थी, ये थी इमोशनल लोनलीनेस, कंपैटिबिलिटी, मैरिज और हैप्पीनेस की कॉम्प्लिकेटेड कहानी। और मैं अचानक से इस मूवी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट किए हैं। तो मैंने सोचा इस फिल्म के जरिए मैंने जो 5 सीख लेसन्स लिए हैं अपनी जिंदगी में, वो आपसे डिस्कस करूं। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर अ वाइल। अभी तो शो की शुरुआत हुई है, बाबू मोशाए कुर्सी की पेटियां बांध ले एंड रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा ले, क्योंकि मिर्ची पे ये लड़की बड़ी फिल्मी आ चुकी है। मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

जाए, कुर्सी की पेटियां बांध ले एंड रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा ले, क्योंकि मिर्ची पे ये लड़की बड़ी फिल्मी आ चुकी है। मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidvala burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम।

0: था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरी, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर!
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। चुप कर ऐसा तूने!
1: पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं
0: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन
2: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
0: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
0: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर! मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: 90 ml विद श्रुति।
1: एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं बात कर रही हूँ 1983 की क्लासिक फिल्म मासूम के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया था शेखर कपूर ने। इसमें लिरिक्स थे गुलजार साहब के, जिसको अपने म्यूजिक से सजाया था आरडी बर्मन ने। और ये फिल्म अपने अलग अलग रीजंस की वजह से आइकॉनिक है, एंड इनफैक्ट हर एज ग्रुप के लिए अलग ही एक याद लेकर आती है यार। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स जहाँ इस फिल्म के गाने तुझसे नाराज नहीं जिंदगी इससे रिलेट करते हैं, वहीं वी बीइंग द 90s किड्स, हमारे बर्थडे पार्टी के सॉन्ग लिस्ट का एक गाना ये लकड़ी की काठी तो जरूर से जरूर होता था यार। फिल्म की बात करें तो इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी एज लीड एक्टर्स थे। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे आपने उर्मिला मातोंडकर और जुगल हंसराज को देखा था एज द किड्स ऑफ दीज टू पीपल। एंड यू नो, इस फिल्म के सितारों के लिए लाइफ इज कमिंग टू अ फुल सर्कल, क्योंकि मासूम द नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, जिसको एक बार फिर से शेखर कपूर ही डायरेक्ट करेंगे, जिसमें नसीर साहब और शबाना आजमी अपने ओरिजिनल रोल्स को रिप्राइज करने वाले हैं। और उनके अलावा फिल्म के स्टारकास्ट में मनोज बाजपेयी, नित्या मेनन और कावेरी कपूर ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। एंड नाउ रिपोर्ट्स हैव इट दैट जुगल हंसराज, जो इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे, वो भी इस स्टारकास्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। माइंड यू, मूवी का म्यूजिक है इस बार ए आर रहमान के हाथों में। एंड ऑल टुगेदर जितने भी लोग ऐड हुए हैं टू द प्रोजेक्ट इज मेकिंग मी रियली रियली एक्साइटेड फॉर इट। बाकी इस फिल्म से आपकी क्या यादें जुड़ी हैं वो मुझसे शेयर करने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे जरूर मिलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पेटी आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट इट्स टाइम टू फाइंड अ मिर्ची फिल्मची इन यू। यस यू हर्ड इट राइट। सो द ड्रिल ऑन अ डेली बेसिस इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजने के लिए, ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। सो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैं अंकुश जी। तो मेरा पहला सवाल है, कटरीना कैफ की कॉमेडी फिल्म जिसमें वो एक वॉनबी एक्ट्रेस बनी है,
3: 30 मार खान।
0: बहुत ही बढ़िया। 30 मार खान के मेल लीड कौन है?
3: अक्षय कुमार
0: की फिल्म जूही चावला के साथ जिसमें दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है।
3: आलू है ना?
0: हाँ हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू।
3: आलू मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
0: बहुत बढ़िया। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के पापा कौन है?
3: कादर खान
0: की फिल्म जिसमें उनका होटल का बिजनेस होता है।
3: दूल्हे राजा।
0: बहुत बढ़िया। दूल्हे राजा में 5 स्टार महाराजा इंटरनेशनल के सामने अपना ढाबा कौन खोलता है?
3: गोविंदा।
0: गोविंदा की फिल्म जिसमें वो हीरोइन की फैमिली को इंप्रेस करने के लिए नौकर बनते हैं।
3: हीरो नंबर वन।
0: बहुत बढ़िया। हीरो नंबर वन की फीमेल लीड का नाम?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है, बेबो किसका निकनेम है?
3: करीना कपूर का।
0: क्या बात है। करीना कपूर की फिल्म जिसमें रोबोट्स हैं?
3: शाहरुख खान के साथ है। हाँ, रावण।
0: बहुत बढ़िया। रावण के मेल लीड कौन है?
3: शाहरुख खान
0: की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं।
3: थेरेपिस्ट बने हैं।
0: हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, बट इस गेम को जहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: तो शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है तो यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके डीएम्स में अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जिसके जरिए मैं आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढती हूँ। सो आज इस गेम की शुरुआत की हमारे साथ अंकुश जी ने। अब इसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ है आयुष।
3: हेलो आयुष, कैसे हैं आप?
4: मैं बढ़िया, आप सुनाओ?
3: बिल्कुल बढ़िया, आप जरा और बढ़िया कर दीजिए ताकि मैं अपना गेम आगे कंटिन्यू कर पाऊँ यार।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो जिस पॉइंट पे अंकुश जी अटके थे, इट वाज शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
4: डियर जिंदगी।
3: डियर जिंदगी में शाहरुख खान के पास थेरेपी लेने कौन जाता है?
4: आलिया भट्ट।
3: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप दोएंगे ना इसको,
4: गली बॉय। गली बॉय
3: गली बॉय के मेल लीड कौन है?
4: रणवीर सिंह।
3: रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है,
4: सिम्बा।
3: वाह, सिम्बा की गर्लफ्रेंड इन द मूवी,
4: सारा अली खान।
3: सारा अली खान की डेब्यू फिल्म,
4: ओ केदारनाथ।
3: केदारनाथ के मेल लीड का नाम?
4: सुशांत सिंह राजपूत।
3: सुशांत सिंह राजपूत ने कौन सी बायोपिक की है?
4: एम एस धोनी
3: में साक्षी धोनी का रोल किसने प्ले किया है?
4: कियारा आडवाणी।
3: क्या बात है, यहाँ लोग गड़बड़ाते हैं, दिशा बोल देते हैं। कियारा आडवाणी ने कौन सी हॉरर कॉमेडी में काम किया है?
4: भूल भुलैया टू
3: में रूह बाबा कौन है?
4: कार्तिक आर्यन।
3: कार्तिक आर्यन की फिल्म विद भूमि पेडनेकर,
4: पति पत्नी और वो
3: में कार्तिक का अफेयर किससे है?
4: अनन्या पांडे
3: की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म
4: टान मेरा दिल।
0: क्या बात है, तो इसी के साथ हमें मिल गया आज का हमारा दूसरा
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो अगर आपको ये गेम पसंद है और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के डीएम्स में अपना नंबर डाल दीजिए, आपको कॉल जरूर आएगा। हाँ, थोड़ा लेट भले ही हो सकता है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स दैट आई गेट, बट यू नो इंतजार का फल मिर्ची फिल्मची होता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकते हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ गाना। रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
4: दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।
2: I'm joking, mama.

0: 20 साल पहले बॉलीवुड ने एक ऐसी लव स्टोरी देखी थी जिसमें ना कोई टिपिकल विलेन था ना कोई परफेक्ट हीरो।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बस कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी शादियों में खुश नहीं थे एंड किसी और के साथ खुद को ज्यादा अलाइव महसूस करते थे। वेल, अगर आपने गेस नहीं किया देन लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। एंड ऑफकोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट अमिताभ बच्चन इन इट। सो फिल्म कैंक ने उस वक्त एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछा था, क्या शादी निभाना ही हमेशा प्यार निभाना होता है? और साल 2006 में इस सवाल ने गलत लेवल पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। इस पे डिबेट्स हुए, फिल्म को क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन आज 20 साल बाद जब हम कभी अलविदा ना कहना को देखते हैं तो लगता है कि फिल्म सिर्फ इनफिडेलिटी की स्टोरी नहीं थी, ये थी इमोशनल लोनलीनेस, कंपैटिबिलिटी, मैरिज और हैप्पीनेस की कॉम्प्लिकेटेड कहानी। तो आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कभी अलविदा ना कहना को सेलिब्रेट कर रही हूँ व्हाइल डिस्कसिंग द 5 लेसन्स जो शायद तब समझ नहीं आए थे। इन द लिस्ट सबसे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पॉइंट कि भाई हर अच्छा इंसान आपके लिए अच्छा पार्टनर हो ये जरूरी नहीं। सो इस फिल्म ने अलग अलग अनकंफर्टेबल सवाल पूछे थे, उसमें से ही एक था, क्या दो अच्छे लोग एक दूसरे के लिए गलत हो सकते हैं? देव और रिया, माया और ऋषि, कोई भी विलन नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि अच्छे लोग भी इमोशनली इनकम्पैटिबल हो सकते हैं और कभी कभी शादी टूटने की वजह कोई बड़ा गुनाह नहीं होता, बस यार हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी चार ऐसे ही लेसन्स की बात होगी विच आई लर्न फ्रॉम कैंक, यानी कि कभी अलविदा ना कहना, बिकॉज हियर आई एम सेलिब्रेटिंग द 20 इयर्स ऑफ दिस मूवी इन द इंडस्ट्री। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pierdva la burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने ले गया,
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot. The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: अच्छा, क्या शादी निभाना ही हमेशा प्यार निभाना होता है?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए थे साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना ने, जिसने इंडस्ट्री में रिसेंटली 20 साल कंप्लीट किए हैं। सो मैंने सोचा कि यार इस मूवी ने जो 5 लेसन्स मुझे पर्सनली सिखाए हैं उसकी डिस्कशन कर लूं। हाँ, ये बात और है कि जब ये फिल्म आई थी तो उस वक्त बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी इसके थॉट प्रोसेस को लेकर, बट एक्चुअली आज जिंदगी के स्टेज पे ना कैंक इज वन ऑफ माई सुपर डुपर फेवरेट मूवीज। तो चलिए 5 के 5 की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए नंबर 2 पे बात करते हैं अबाउट द लेसन कि रिलेशनशिप में सबसे डेंजरस चीज कभी कभी साइलेंस होती है। सो मूवी में देव और माया का कनेक्शन एकदम से नहीं बनता। पहले आती है लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग मिसअंडरस्टूड, और फिर एक ऐसा इंसान मिलता है सामने वाले को जो वो बात समझ लेता है विच योर पार्टनर कुडंट इवन थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैंक रिमाइंड्स अस कि इमोशनल निग्लेक्ट भी निग्लेक्ट ही होता है, और जब दिल में बातें जमा होती रहती हैं, डिस्टेंस अपने आप बढ़ता जाता है। मूविंग ऑन नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट द थॉट कि भाई प्यार मिल जाना और सही काम करना दोनों अलग चीजें हैं। देखो, ये फिल्म देव और माया यानी कि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को ट्रू लव विनर्स बनाकर नहीं छोड़ती। उनके डिसीजन से ऋषि और रिया यानी कि अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा हर्ट होते हैं, फैमिलीज टूटती हैं और गिल्ट भी साथ चलता है। मतलब प्यार रियल हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्यार तक पहुंचने का हर डिसीजन सही हो। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी तो ऐसी ही लेसन्स की बातें करूंगी विच आई लर्नड फ्रॉम करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: देखो इस फिल्म में ना कोई टिपिकल विलन था और ना ही कोई परफेक्ट हीरो।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन दिनों आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट करण जौहर की मच लव्ड एट द सेम टाइम वेरी मच कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म कैंक, यानी कि कभी अलविदा ना कहना, जिसने इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट किए हैं। तो इसे सेलिब्रेट करते हुए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आई एम डिस्कसिंग अ फ्यू लेसंस दैट आई लर्न फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब नंबर चार पे बात करते हैं अबाउट द थॉट कि जो रिलेशनशिप बाहर से परफेक्ट दिखता है जरूरी नहीं अंदर से भी परफेक्ट हो। लाइक ऋषि एंड रिया, दोनों सक्सेसफुल लविंग और हैप्पी कपल दिखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी लाइफ का मतलब हैप्पी मैरिज होता है? सोचो आज ये डिबेट्स हम ऑनलाइन देखते हैं, बट कभी अलविदा ना कहना ने आज से 20 साल पहले इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत की कि भाई रिलेशनशिप की रियलिटी वो नहीं जो दुनिया देखती है, रियलिटी वो है जो दो लोग अकेले में फील करते हैं। मूविंग ऑन नंबर पांच पे अबाउट द थॉट, कभी कभी खुद को चूज करना भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। देखो बॉलीवुड में यूजुअली प्यार मिल गया तो दी एंड एंड दैट इज हैप्पी एंडिंग्स। वहीं कैंक ने कहा नहीं भाई, नॉट सो फास्ट, कभी अपनी हैप्पीनेस चूज करने के बाद भी गिल्ट होता है, हार्ट ब्रेक होता है, लोनलीनेस होती है और कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। किसी रिलेशनशिप से निकल जाना इजी नहीं होता और किसी नए प्यार को चूज कर लेना पुराने दर्द को मैजिकली इरेज नहीं कर देता। एंड मे बी दैट्स वाई कैंक स्टिल हिट्स डिफरेंटली 20 years लेटर। 2006 में फिल्म को देखकर बहुत लोगों ने कहा था यार ये कैसा प्यार है, बट आज 20 साल बाद ये सवाल थोड़ा बदल गया है कि क्या सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप निभाना जरूरी है क्योंकि वो सोसाइटी की नजर में परफेक्ट है। और शायद कभी अलविदा ना कहना की सबसे बड़ी लेगेसी यही है, इट डिडंट गिव अस अ परफेक्ट लव स्टोरी, इट गेव अस एन अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन अबाउट लव, मैरिज, लोनलीनेस एंड चूजिंग हैप्पीनेस इवन व्हेन देयर इज नो कम्प्लीटली राइट चॉइस। बाकी आप इस फिल्म के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

कसम से इस आवाज में आधी रात में गाने लगी ना तो चमगादड़ भी भाग जाएंगे। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप और मैं आज बात कर रही हूँ अबाउट दिस फिल्म लम्हे, जो 1991 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा साहब। और इस फिल्म में श्रीदेवी मैम और अनिल कपूर सर लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। एंड यस, एक चीज तो आपको ये बात सुनने के बाद बिलीव हो जाएगी कि भाई किसी भी कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए उसका फैशन सेंस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो बेसिकली इस फिल्म में दो सीन्स ऐसे हैं जिसमें श्रीदेवी मैम को ना बांधनी स्कर्ट विद अ क्रॉप टॉप चाहिए था। एक था शॉपिंग सीक्वेंस और दूसरा था पैलेस के बाहर स्टोरी टेलिंग सीक्वेंस। सो श्रीदेवी मैम को ब्लू बांधनी और मरून बांधनी चाहिए थी। एंड जितनी भी लड़कियां फिलहाल मुझे सुन रही होंगी दिल भी लाइक, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई श्रुति, ये तो मार्केट में ऐसे ही अवेलेबल होता है। नहीं, द कैच वॉज दैट श्रीदेवी को मरून पे व्हाइट बांधनी चाहिए थी एंड ब्लू पे ग्रीन बांधनी चाहिए थी, विच वॉज डेफिनेटली नॉट इन द मार्केट। जिसके बाद इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लूला मैम ने अपने मास्टर जी को बोला कि भाई आप ना कॉस्ट्यूम तैयार कीजिए। फिर वो उन कॉस्ट्यूम्स को अपने घर लेकर गई एंड लिटरली एक एक बांधनी डिजाइन उस पे हैंड पेंट किया। एंड दैट इज द रीजन आई सेड किसी भी कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए उसका फैशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: अब्बा जब्बा डब्बा।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आज डिस्कस कर रही हूँ दुनिया में पाए जाने वाले दो तरीके के फास्ट बोलने वाले लोग। हाँ, जो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके बोल नहीं रहे, नहीं समझ में आ पाया ना, बस यही हाल होता है, इसीलिए इनको डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो फास्ट बोलने वाले लोगों की नॉर्मल कैटेगरी है, मतलब इनके बोलने का पेस बाकी लोगों से ज्यादा होता है बट वो फिर भी समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के है, ओ हो, दे स्पीक फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट भाई। और गलती से अगर ये अपनी जिंदगी की कोई बहुत ही इंटेंस सिचुएशन समझा रहे हैं जिसमें सब कुछ एकदम आनंद आनंद में हुआ है, तो जिस तरीके से मैं अभी बोल रही हूँ उस तरीके से वो बोलेंगे और फिर आपको ना कुछ नहीं समझ में आ पाएगा, आपको आया मैंने क्या बोला समझ। वैसे आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virpa, la burka. Mirchi, burka. Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ चला तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकुड़ुकु
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
1: कुकुड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

काजोल के डर की वजह से पोलैंड की वादियों को बनाया गया जम्मू कश्मीर। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म फना, जिसमें आमिर खान और काजोल लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2006, डायरेक्टेड बाय कुणाल कोहली, एंड यस, इस हिसाब से इस फिल्म ने 20 साल इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं। सो या अबाउट द वैलीज, जो आप इस फिल्म में देखते हैं वो जम्मू कश्मीर नहीं बट एक्चुअल में पोलैंड की वादियां हैं। सो एक्चुअल में जब काजोल को पता चला कि इस फिल्म के मेजॉरिटी पोर्शन की शूटिंग जम्मू कश्मीर में होने वाली है, देन शी फियर्ड टेररिस्ट अटैक्स, एंड दैट इज वाई इस पूरे के पूरे शूट को शिफ्ट किया गया इन पोलैंड। इनफैक्ट इस मूवी के एल्बम पे जो म्यूजिशियन डुओ ने काम किया है, दैट इज जतिन ललित ने, ये उनकी लास्ट मूवी थी एज अ डुओ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने सेपरेटली काम करना शुरू किया था। एंड अगर आपको इनके काम के बारे में उतना कुछ याद नहीं है तो मोहब्बतें, DDLJ, K3G, ये सारी फिल्मों के एल्बम्स इन्होंने ही तो क्रिएट किए हैं। तभी मैं कहती हूँ बड़े पर्दे पे जो कहानी आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां होती हैं, जो ढूंढकर मैं आप तक लेकर आती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस उल्टी पुल्टी जिंदगी में एक उल्टा पुल्टा गेम तो बनता है यार।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: So, क्योंकि आपने मेरे मिर्ची फिल्मची को इतना सारा प्यार दिया है, यू लव टू प्ले फिल्मी गेम्स, तो मैंने दो नए गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वन इज फिल्मी डिटेक्टिव और अभी जो गेम खेलने वाली हूँ उसका नाम है फिल्मी उल्टा पुल्टा। यहाँ मैं फिल्म का नाम उल्टा पुल्टा करके यानी ऑपोजिट करके बताती हूँ और आपको सही नाम गेस करना होता है। तो फिलहाल मेरे साथ जम्मू से टेलीफोन लाइन पे है अनुभव शर्मा। आर यू रेडी सर?
2: ऑफ कोर्स।
0: क्या बात है, आई लव दैट एनर्जी। चलो क्योंकि ये गेम नया है तो मैं एक दो एग्जाम्पल्स से शुरू करूंगी। कुछ भी नहीं होता,
2: कुछ कुछ होता है।
0: एग्जैक्टली, हम अलग अलग हैं।
2: हम 7 साल हैं।
0: वेरी गुड, तो अब शुरू करते हैं फाइनल गेम। तो मेरा पहला सवाल है, आज है ही है,
2: कल हो ना हो,
0: मत कहो नफरत है,
2: कहो प्यार है, कहो ना प्यार है,
0: यस, दिमाग मना करता है,
2: दिल चाहता है,
0: कोई खो गया,
2: कोई मिल गया,
0: वेरी गुड, जब आई लेफ्ट,
2: जब आई लेफ्ट,
0: हाँ,
2: जब वी मेट,
0: वेरी गुड, तलाक,
2: विवाह,
0: दुश्मन बनाया किसी और ने,
2: आशिक बनाया आपने,
0: यस, ओके, सोते रहो सिड,
2: वेक अप सिड।
0: क्या बात है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो काफी अच्छा खेला है यार अनुभव आपने। वैसे अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में क्या बोलना चाहोगे?
2: एक्चुअली आई फेल्ट लाइक कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं आपने। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं सोच रहा था थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए।
0: यार देखो इजी तो था, बट यू विल डेफिनेटली गेट अ हैंग ऑफ इट आफ्टर सम टाइम। वैसे अगर आप भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं देन यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: वो जमाना जब म्यूजिक एल्बम खरीदना एक इवेंट हुआ करता था।
1: 90 ml With Shruti.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप और बाबू मोशाय, आज गाना रिलीज होता नहीं है कि कुछ सेकंड्स में ही दुनिया के हर फोन में पहुंच जाता है, वो भी एक नहीं कई एप्स के जरिए पहुंच जाता है। बट 90s में ना म्यूजिक सुनना एक एक्सपीरियंस हुआ करता था यार, कैसेट्स खरीदना, कवर देखना, लिरिक्स याद करना। इनफैक्ट मैं तो भाई एक डायरी मेंटेन किया करती थी लिरिक्स वाली, और उसमें अपने फेवरेट गानों के लिरिक्स लिटरली सुन सुन के रिपीट पे गाने को चला चला के नोट डाउन किया करती थी। और फिर गली मोहल्ले में हमारी एक शॉप हुआ करती थी जहां हम खाली कैसेट ले जाते थे और बोलते थे कि भैया हमें ना ये गाने डालने हैं, आप प्लीज एक चंक बना के हमें दे दो। और भाई उस कैसेट को हम अपने सीने से लगा कर रखा करते थे। इनफैक्ट अगर आपके ग्रुप में किसी को पता चल गया कि आपके पास नए गानों का कलेक्शन आ चुका है, तो फिर वो कैसेट हर इंसान अपने घर एक बार लेकर जाता था और उसकी कॉपी बनवाता था। सो या एक टाइम पे ये ईज हमें काफी अच्छी लगती है, बट जब याद करते हैं उस क्रेज को जो अपने फेवरेट गानों को एक कैसेट में कलेक्ट करने का हुआ करता था, दैट इज नेक्स्ट लेवल। बाकी आपने भी तो अपना कोई फर्स्ट कैसेट कभी खरीदा होगा ना, उसकी बैक स्टोरी बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे जरूर कनेक्ट करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
2: दाल चावल और अचार ना हो आम का, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
1: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: यार आज एक ऐसा मैसेज आया ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। हैप्पी बर्थडे कहने वाले हम। मस्त मौला गौरव। अर्पित भाई तुम्हें मुबारक हो, तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सदा खुश रहे दोस्तों का परिवार तुम्हारा। मनीष फैसल एंड इब्राहिम, इन तीनों मिलके कहा है मनीष फैसल इब्राहिम ने कि मेरे दोस्त अर्पित को बर्थडे विश कर दीजिए। हम लोग कार पूल फ्रेंड्स हैं और उसके लिए एक अच्छा सा गाना भी बजा दीजिएगा। खैर गाना तो हम बजाएंगे सर, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों की इस बात पर दिल गार्डन गार्डन हो गया यार। हम अपने दोस्ती के दौर में चले गए जब ऐसे हमारे दोस्त भी हमारे लिए छोटी छोटी चीजें करते थे पर हमें बहुत बड़ी बड़ी लगती थी। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: लेकिन आई एम श्योर अब आप लोग बर्थडे विश कराने के बाद अर्पित से कहेंगे देख अर्पित तेरा बर्थडे विश गौरव ने रेडियो में कर दिया, अब तो पार्टी चाहिए दोस्त, तो करो पार्टी यार। एंड अगला गाना हमारी तरफ से सारे दोस्तों के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यार इंसान जिंदगी में ना अगर अच्छे दोस्त कमा ले तो समझ लो जिंदगी की आधी मुसीबत जो है वो यूं ही दूर हो जाती है। अगला गाना आपके दोस्तों के लिए हमारी तरफ से मिर्ची पर।

0: Maika.
1: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana.
3: Rambana.
2: Murga, murga. La vieja la murga.
3: Milchi, murga.
4: हेलो
5: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
4: आई एम वेरी फाइन, थैंक यू।
5: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
4: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ, नहीं लगता उसका।
5: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे, यू नो।
4: नहीं,

0: मतलब क्या परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
1: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
0: मतलब गेम है क्या ये?
1: आओ मिलो शिलो शालो,
0: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
1: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
0: आओ मिलो
1: शिलो शालो,
0: शालो
1: कच्चा
0: धागा,
1: रेस
0: लगा लो,
1: दस
0: पत्ते तोड़े,
1: एक
0: पत्ता कच्चा।
1: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे। दस पत्ते
0: तोड़े
1: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
0: दस पत्ते तोड़े,
1: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
0: हिरण का बच्चा,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
0: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
0: यार ये कोई सुनेगा
1: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: यार कितना मुश्किल होता था ना जब आपको कोई काम कराना होता था और सामने वाला आया ही नहीं होता था। तो सुबोध शर्मा ने जैसे कहा है तो फिर आओ, ऐसे ही हम भी कहते थे अरे आओ ना, आओ भैया जल्दी आओ, अपना काम कराए और निकले। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने काम कराने जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, चाहे अगर आप बैक इन होम टाउन की बात करें, होम कंट्री में भी हम काम कराने जाते थे, पता लगता था नहीं आज सर तो आए नहीं है, आप ऐसा करिए कल फिर आइए, ऐसा है सर आज निकल गए आप कल फिर आइए, और ऐसे में न जाने हम कितनी बार जाते थे। लेकिन हमारे कतर में डिजिटलाइजेशन का जब से दौर शुरू हुआ ना, चीजें आसान हो गई हैं, और अब उन ऐप पर एक इम्पोर्टेंट सर्विस अपडेट
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज़ ऑफ द डे।
0: ये काम की बात उनके लिए है, स्पेशली अगर आप पेट लवर्स हैं या फिर एनिमल बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ये मामला आपके लिए बहुत सिंपल हो गया है। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने अपने ऊन ऐप पर, OUN ऊन ऐप है, अगर आपने डाउनलोड किया होगा, आप किसी भी पार्क को भी जब बुक करना चाहते हैं, बाबी को स्पॉट को बुक करना चाहते हैं, तो आप ऊन ऐप का यूज करते हैं। अब इस पर 38 नई सर्विसेज, यस पूरी 38 नई सर्विसेज जो है वो लॉन्च कर दी गई हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे इससे आप क्या क्या कर पाएंगे। जब सब कुछ डिजिटल हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती है। जैसे अगर अब आपको बाहर से कैट डॉग हॉर्सेस फाल्कन्स या फिर इवन रेसिंग कैमल्स लाने हैं तो उसके लिए इंपोर्ट परमिट अब आपको उन ऐप पे ही मिल जाएगी। या मान लीजिए आप एनिमल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, टेबल एग्स, ऑर्नामेंटल फिश, वाइल्ड बर्ड्स, ये सब का परमिट भी आपको एक क्लिक पे आपके फोन पे, और सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट के लिए भी। वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट जिसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ते थे वो भी अब आपको इस ऐप पे ही मिल जाएगा। मतलब पहले जिसके लिए आप बार बार ऑफिस में आते जाते थे, सोचते थे आज काम हो जाए, आज काम हो जाए, कैप्टन आज हमें दे दे, अब उतना दिमाग नहीं लगाना है। यस, कतर की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक सॉलिड स्टेप में ये 38 नई सर्विसेज अब वेटनरी से रिलेटेड कई सारे कामों को, कैमल से रिलेटेड बहुत सारे कामों को, या यूं कह ले अगर आप पेट के शौकीन हैं आपके लिए भी चीजें इजी हो गई हैं। एंड ये बता रहा है कि जितनी चीजें डिजिटलाइज होंगी काम उतना आसान होगा और हमारे यूं एनर्जी भी बचेगी। थैंक यू, अब उन ऐप डाउनलोड कर लो भैया, आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आना है, स्पेशली इफ यू आर अ पेट लवर्स। 89.6 मिर्ची 1। अब बताओ आगे क्या होगा, अरे नेहा कक्कड़ फरहान साबरी की आवाज में गाना होगा।

0: 89.6 मिर्ची वन पर सुभान अल्लाह माशाल्लाह गाना खत्म हुआ और आपके साथ जुड़ जाता है नाम ही है जिसका देवी और सज्जनों इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में ना जब पैसे पास में हो तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो गोल्ड है।
1: गोल्ड अपडेट
0: वेल अल्फादान एक्सचेंज पैम्प गोल्ड रेट्स अगर पैम्प 1 ग्राम गोल्ड डेली फॉर्चुना बार की बात करें दिस विल कम टू 593 कतारी रियाल पर 1 ग्राम पैम्प 5 ग्राम गोल्ड डेली फॉर्चुना बार 2784 कतारी रियाल 10 ग्राम गोल्ड डेली फॉर्चुना बार 5498 1 आउंस 16998 कतारी रियाल एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज 63129 कतारी रियाल ये थे राइट नाउ अल्फादान एक्सचेंज पर मिलने वाले पैम्प गोल्ड के रेट्स एंड मस्ट फॉलो गौरव इतना ही कहेगा मैं इसे बार बार सेफ इन्वेस्टमेंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब चाहिए तुरंत खटाक से ये रीसेल होकर आपकी वैल्यू को और बढ़ा देता है 89.6 मिर्ची वन पर ये था हमारा गोल्ड अपडेट मिर्ची सॉर्ट
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फादान एक्सचेंज पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न।
6: यस
5: टू प्ले।
6: एब्सोल्युटली
5: टू ग्रो
6: विद मेजराती।
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: The show was absolutely amazing.
9: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: लाओ।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अरे हमने सुना था जुलाई के बाद अगस्त आता, अगस्त के बाद सितंबर आता है। मौसम नहीं बदल रहा, महीने बदलते जा रहे। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आज पहुंचा फिर से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और मिनिमम अराउंड 33। अभी शाम को 5 बजे लेकिन टेम्परेचर सूरज चाचू 38 के आसपास टिका के रखे। मैं यही सोच रहा हूँ यार कि मतलब वो दिन कब आएगा जब मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 30 का बताऊंगा, शायद तब जाके थोड़ी राहत मिलेगी। ह्यूमिडिटी एट 48% आज जबरदस्त परेशान करने वाली है और हवाओं की रफ्तार किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है जिस दिन ह्यूमिडिटी का बोलबाला होता है उस दिन हवा का एकदम से बल टूट जाता है। फिलहाल के बस इतना ही कहूंगा, पानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेट रखे रहो। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब टेम्परेचर उतना भी बुरा नहीं होगा, सुबह शाम हसीन हो जाएगी एंड फिर थोड़ा सिचुएशन रोमांटिक हो जाएगी। अब जब रोमांटिक सिचुएशन आई है तो रोमांटिक गाना थोड़ा और ज्यादा वाला मिर्ची पे इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
8: The Mentalist Suhani Shah

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: लाल कलरची बंगडी संजू राठोड की आवाज
1: मस्त मौला गौरव
0: गना बड़ा लाजवाब। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 5:04
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आप जिंदगी में कितने भी बड़े स्टार बन जाएं, लेकिन मम्मी जैसी चप्पल उठाती हैं आप दुनिया के सबसे डरपोक बच्चे ही होते हैं। फिलहाल हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सुपर स्टार की आवाज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की आवाज सुनिए और बताइए किसकी आवाज है।
3: सेट को जाने से पहले मैं वैन में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेकडाउन दैट हैपेंस एंड नॉट बिकॉज कि चलो गाली देनी है ये देना है, बट आल्सो यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट इज जस्ट सो नॉट यू। इट्स अ शेडिंग ऑफ
0: यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट्स नॉट यू। हाँ जी, यानी कि ये कौन सा स्टार है जिसने फिल्मों में अलग सा रोल किया है।
3: सेट को जाने से पहले मैं वैन में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेकडाउन दैट हैपेंस एंड नॉट बिकॉज कि चलो गाली देनी है ये देना है, बट आल्सो यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट इज जस्ट सो नॉट यू। इट्स अ शेडिंग ऑफ।
0: वेल, अगर आप पहचान पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पा रहे तो हिंट दूंगा, एक आखिरी बार ध्यान से सुनो।
3: सेट को जाने से पहले मैं वैन में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेकडाउन दैट हैपेंस एंड नॉट बिकॉज कि चलो गाली देनी है ये देना है, बट आल्सो यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट इज जस्ट सो नॉट यू। इट्स अ शेडिंग ऑफ।
0: मैंने बता दिया ये बंदा अपना एक इंटरव्यू दे रहा है जहां पर ये बता रहे हैं, लेकिन ये हीरो है कौन जिनकी आवाज मैं यहां आपको सुना रहा हूं। वेल, इनका सिर्फ बॉलीवुड तक नाता नहीं है, ये उसके आगे भी निकल चुके हैं। 5001896 5001896 पर मस्त मौला गौरव सवाल पूछ रहा है, बताओ ये आवाज किसकी है जो आज मैं अपने शो पर प्ले कर पहचान कौन मैं पूछ रहा हूँ।
3: सेट को जाने से पहले मैं वैन में, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेकडाउन दैट हैपेंस एंड नॉट बिकॉज कि चलो गाली देनी है ये देना है, बट आल्सो यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट इज जस्ट सो नॉट यू। इट्स अ शेडिंग ऑफ।
0: भाई पॉसिबल है कि अगली बार आप फोन करके मतलब मैसेज करके बता देंगे गौरव ये तो फला हीरो है। 5001896 पर मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है और सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में मधोश अगला गाना यहाँ प्ले करने जा रहा है एंड आपके जवाबों का इंतजार कर रहा है। 5001896 पर ये आवाज किस एक्टर की है, मैंने कहा ये सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं, ये अब उसके आगे निकल चुके हैं, हॉलीवुड में भी पहचान बना चुके हैं। हाँ जी, 5001896 पर इंतजार। मिर्ची इट्स

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virpa, la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का

0: बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
0: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
0: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
0: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
0: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
0: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
0: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
0: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
0: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
0: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
0: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
0: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoono. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live

0: हां जी दिलजीत दोसांझ बादशाह ने गा दिया नैना और हमने सुना है मस्त मौला गौरव मस्त मौला गौरव। यार पता नहीं कैसे अचानक से हिक्स आ गए, हिचकी आ गई, लेकिन फिलहाल हम और आप मिलके खेल रहे हैं जिसे कहते हैं और पहचान कौन में आज की आवाज के स्टार कौन है।
1: सेट को जाने से पहले मैं वैन में इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेकडाउन दैट हैपेंस एंड नॉट बिकॉज कि चलो गाली देनी है ये देना है बट आल्सो यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट इज जस्ट सो नॉट यू, इट्स अ शेडिंग ऑफ।
0: हाँ जी इट्स अ शेडिंग ऑफ और जो करेक्टर आप है नहीं जब आपको वो प्ले करना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम्स होती है एंड ऐसी बात लिख कर दिल गार्डन गार्डन कर दिया है तो आइए जवाब सुने हमारे मिस्टर्स का।
2: दिस इज लाइशन शेट्टी द वॉइस इन दिस ऑडियो इज शर्मन जोशी।
3: हेलो जोशी। हेलो गुड इवनिंग रेडियो मिर्ची
0: जी भाई।
3: नमस्ते सबको।
0: नमस्ते नमस्ते
3: भाई। मेरा नाम दिनेश है, मैं नेपाल से हूँ।
0: अरे वाह,
3: जो अभी आवाज आपने सुनाई थी वो मुझे लगा शर्मन जोशी जी की है।
0: शर्मन जोशी
3: और वो बहुत ही फाइन एक्टर है
0: नो डाउट।
3: मैं कतर से ये आपका हमेशा सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू
3: आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं।
0: शुक्रिया,
3: कीप इट अप, कांग्रेचुलेशन।
0: थैंक यू हजूर, राम रो हजूर, थैंक यू सो मच। एंड इन सब के बीच और कौन कौन है।
4: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू
0: कैसे हैं? आइए बढ़िया बढ़िया।
4: यूसुफ विद यू।
0: जी जी,
4: आज का तो थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने रिकॉर्डिंग करके आई थिंक मोर देन 10 टाइम्स सुना तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये है अली फजल।
0: ठीक
4: है, थैंक यू, बाय बाय
0: बाय
5: बाय। हाय गुड इवनिंग सर, मैं अब्दुल रहमान वकरा से।
0: हाँ वकरा से भाई,
5: ये आवाज अली फजल की है और ये बात मिर्जापुर मूवी की कर रहे हैं।
0: जोरदार ताली। शर्मन जोशी से कंफ्यूजन जरूर हुआ है क्योंकि आवाज दोनों की बड़ी सिमिलर है पर ये राइट आंसर इज अली फजल। ध्यान से सुनिए, समझ में आने लगता है आपको।
1: सेट को जाने से पहले मैं वैन में इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रेकडाउन दैट हैपेंस एंड नॉट बिकॉज कि चलो गाली देनी है ये देना है बट आल्सो यू प्लेइंग अ कैरेक्टर दैट इज जस्ट सो नॉट यू, इट्स अ शेडिंग ऑफ।
0: हम गुड्डू भी लिबी लिबी नहीं है, हमको इज्जत चाहिए, फुल टू इज्जत। ये एकदम शर्मन जोशी जैसी आवाज थी पर दिस वाज अली फजल एंड हॉलीवुड तक का सफर तय किया भाई। कितनी सारी फिल्में में फास्ट एंड फ्यूरियस में आए, उसके बाद एक विक्टोरिया बोल के फिल्म थी उसमें आए एंड अब आप मिर्ची पर ये जवाब बताए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। 89.6 मिर्ची 1 पर फिलहाल टंडन जोड़ी, बोले तो सचेतन परंपरा। इट्स ऑल

0: लगती है
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

यशिता शर्मा, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन, एनर्जी के साथ गाना सुनाया किसने? और जब हम आपके साथ हैं देवी और सजनों, हम आपको इस वक्त पैसों की ताकत जरूर बताते हैं। राइट नाउ की अगर बात की जाए तो इस वक्त मिलने वाले एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 25.90 यानी कि 25.90 रुपए भारतीय मुद्रा के, वहीं अगर हम श्रीलंकन रुपीस की बात करें 90.06 अगेंस्ट 1 कतरी रियाल श्रीलंकन 90.06, वहीं अगर पाकिस्तान रुपीस की बात करूं जनाब 76.16 पाकिस्तान रुपीस अगेंस्ट 1 कतरी रियाल। तपाईको नेपाल रुपीस का रेट से दाजो 1 कतरी रियाल के बदले, हाँ जी बहनी 1 कतरी रियाल के बदले आपको मिलेगा 41.33 को नेपाल रुपीस का रेट से दाई, हाँ जी 41.33 को नेपाल रुपीस घर भेजन लाई राइट टाइम छोबा भाई, अगर घर भेजना है तो बंधु तुरंत भेजिए। एंड ऐसे में बांग्लादेशी टाका बात करके दादा 1 कतरी रियाल के बदले 33.67 एट रेट आचे बांग्लादेशी टाका चलो। तो मस्त मोलो गौरव के साथ शाम शानदार चल रहा है, सुनते रहो मिर्ची शॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: The Mentalist Suhani Shah live.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरे बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: महमूद राघव चौतन्य रुआ खे की आवाज में मामा शू का नहीं मस्त मौला गौरव आया। और मिर्ची घड़ी का टाइम भी बताना है, शाम के 6:04 आ गए होने।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और ठीक अब से हाफ एन आवर के बाद जो होने वाला है वो है इंडिया में बिग बॉस 20 का प्रीमियर शो। सलमान खान एक बार फिर से आ गए हैं अपनी बिग बॉस की टीम को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है, इस बार पहले ये हॉटस्टार पे आ रहा है जियो के, और उसके बाद टेलीविजन पर कलर्स टीवी पे आप इसे देख पा रहे हैं। एंड मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बिग बॉस 20 के अगर कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो भैया लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन इसमें मनोज तिवारी का एक मजाक बनाते हुए सलमान खान कहते हैं आप दोबारा क्यों आ गए, तो वो कहते हैं नहीं मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। यस, बिग बॉस 20 में इस बार कंटेस्टेंट्स की लिस्ट की अगर बात की जाए तो कुछ नाम ऐसे हैं जो माहौल बनाने ही आ रहे हैं। अब जैसे कि आमिर खान के वो भाई फैसल भाई, हाँ जी वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा मैरी कॉम की बात हो रही है, अगर हम बात करें करण वाही जो कि उदिति सिंह के एक्स हस्बैंड रहे, वो भी कुशल तंवर, काजी तौकीर जिन्होंने अरिजीत सिंह को हरा कर फेम गुरुकुल जीता था, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती, खुशी दुबे, एंड कहा यह जा रहा है इसके अलावा मनोज तिवारी की बेटी भी इस बार का हिस्सा है, एंड ईशा रिखी जो कि बादशाह की पुरानी वाली वाइफ है, हाँ जी ईशा रिखी भी इस शो पर आ रही है और अभी धीरे धीरे नाम खुलेंगे। लेकिन बॉक्सिंग से पूरी दुनिया में धूम मचाकर इंडिया का नाम रोशन करने वाली मैरी कॉम भी इस बार रूमर्ड कंटेस्टेंट है। अगर ऐसा है तो बिग बॉस का ये सीजन भी धमाल होगा, कमाल होगा। लेकिन मस्त मौला गौरव अब आपके दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रहा है और आपसे पूछना चाहता है सीजन 1 ऑफ बिग बॉस का विनर कौन था। अब याद कीजिए सीजन 1 बिग बॉस जो इंडिया में आया उसका विनर कौन था। मुझे याद है बिग बॉस इंडिया में बिग ब्रदर के बाद लॉन्च हुआ और बिग ब्रदर में शिल्पा शेट्टी जब जीती तो ऐसा माहौल बना कि अब तो इसे इंडिया में भी लेकर आ रहे हैं और बस फिर शुरू हो गया बिग बॉस का दौर। तो बिग बॉस सीजन 1 के विनर का नाम अगर आपको याद है तो 5000196 पर जरूर बताइए। मस्त मौला गौरव इंतजार कर रहा है। 5000196 बिग बॉस सीजन 1 का विनर मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La
1: virpa la burga. Mirci, burga. Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए ले गया,
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: आप ठीक है?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: श्रेया घोषाल जुबिन नौटियाल की आवाज में गाना यहाँ सुनाया, धड़क किसने? बस एक धड़क धड़क का जो आगे वाला वर्जन बना है, पार्ट टू बना उसका ये गाना है। एंड फिलहाल के लिए हमने एक सवाल था ताना, और सवाल था कि बिग बॉस सीजन 1 का विनर कौन है, क्योंकि आज से इंडिया में शुरू होने जा रहा है बिग बॉस सीजन 20। लेकिन 20 सालों बाद भी लोगों को पहले विनर का नाम याद है।
1: इवनिंग गौरव, मेरा नाम नितिन है, और मुझे लगता है इसका जवाब राहुल रॉय है। राहुल रॉय वाज द फर्स्ट विनर इन बिग बॉस।
2: गुड इवनिंग गौरव, ये बिग बॉस के फर्स्ट सीजन के विनर थे राहुल रॉय। थैंक यू, बाय बाय।
0: ओके ओके,
3: सॉरी गौरव भाई, ड्राइविंग कर रहा था इसलिए ठीक से वॉइस मैसेज भेज नहीं पाया।
0: जी, फिर से भेजा आपने,
3: मैं ऑलवेज आपको सुनता हूँ, बहुत बढ़िया शो होता है, बहुत बढ़िया होस्ट करते हैं, आपकी आवाज सुन के मजा ही आ जाता है एकदम। अच्छा, बिग बॉस 1 का विनर था राहुल रॉय, आशिकी के हीरो रह चुके हैं।
0: जी,
3: थैंक यू सो मच रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: और विश्वास कीजिए, बिल्कुल ये मेरे सुनने वाले हैं, मैंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए भाई, मैं तो खुद पैसे नहीं रख पाता हूँ, 10 तारीख के बाद तो वैसे भी खत्म हो जाते हैं, पर भाई ने तारीफ किया, भाई के लिए दिल से थैंक यू यार। बस हमारा शो सुनिए, खुश रहिए, और हम क्या चाहते हैं। फिलहाल अगला गाना आशिकी से हम सुनाते हैं, और ये बहुतों का फेवरेट है, हमें पता है, मिर्ची थॉट।

अब बिजली नहीं बिजुरिया ही दौड़ेगी जब हम आपसे ये कहेंगे कि आपको एक दिन के अंदर स्विमिंग करनी है, फिर साइकिलिंग करनी है, फिर रनिंग करनी है, तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, आराम से स्विमिंग साइकिलिंग एंड रनिंग कर लेंगे। जब हम ये कहेंगे कि 2 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, 80 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है और 18 किलोमीटर रनिंग करनी है, तो आप क्या कहेंगे, छोड़ दो हम सोई जाएंगे बेहतर है। लेकिन हम आपको बता दें, विजिट कतर और प्रोफेशनल ट्राइथलेट ऑर्गेनाइजेशन ने लुसेल में इस साल होस्ट होने वाले 2026 कतर 300 ट्राइथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप की डेट अनाउंस कर दी है। Yes, ये इवेंट 10th से 12 दिसंबर तक कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर के लिए हमारे कतर में होस्ट होने जा रहा है। एंड इसमें भाई जो कोर्स का रूट है वो यूं ही है, 2 किलोमीटर की स्विमिंग है जो कि अरेबियन गल्फ में होगी, 80 किलोमीटर की साइकिलिंग लुसेल सिटी की स्ट्रीट्स पर, एंड उसके बाद 18 किलोमीटर रनिंग लुसेल प्लाजा और बॉलोवर्ड पर। भाई मतलब कुल मिला के इतना ही कहना चाहता हूँ कि लुसेल की रौनक और बढ़ जाएगी जब इस बार कतर 300 ट्राइथलन वर्ल्ड चैंपियनशिप की डेट्स आ जाएंगी। यस, 10th to 12th of December, एंड दुनिया के कुछ बड़े बड़े ट्राइथलन के चैंपियंस इसका हिस्सा बनेंगे। ये हमें मोटिवेट कर देंगे दोस्तों, 2 किलोमीटर स्विमिंग, 80 किलोमीटर साइकिलिंग, 18 किलोमीटर रनिंग, ये हम 4-5 साल में ना कर पाए, ये एक दिन में कर रहे। मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर इनसे हम सीख के 200 मीटर स्विमिंग, 8 किलोमीटर साइकिलिंग और 2 किलोमीटर रनिंग भी कर लेंगे ना, तो हम ऋतिक रोशन जैसे स्मार्ट हो जाएंगे। सच बता रहे, फिलहाल तो अदनान भैया इतना ही कहेंगे कि हमसे ना हो पा रहा है जी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिएगा, इस जगह जरूर पहुंचिए ताकि मोटिवेशन हाई हो जाए और उसके बाद हमारा वजन धाएं धाएं कम हो जाए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: The Mentalist Suhani Shah live.

मुसु मुसुहासी, निकल जाएगी सारी हंसी जब खुल देगी सुहानी तुम्हारा दिमाग। यस, बात कर रहा हूँ मैं द मेंटली सुहानी शाह की, जो हमारे कतर में आ रही हैं एंड कह सकते हैं ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे। एंड सुहानी शाह वाली ये जो शाम है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि गौरव क्या खास होगा। हमने कहा खास नहीं, अगर तुम पकड़े गए तो तुम खास खास के अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करोगे, क्योंकि सुहानी इज अ ग्रेट माइंड रीडर एंड वो ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है ना कि जो बात वो बोल रही है ऐसा लगेगा यार सच में इसको कैसे पता लग गया। सब ट्रिक है सर, और ट्रिक की इस दुनिया में जो चैंपियन है वो है सुहानी शाह। 7 साल की छोटी उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपने इसी पैशन को अपना करियर बनाने में लग गई, और 7 ईयर्स की छोटी एज से स्टेज शोज करती आ रही है। आजकल आपने देखा होगा लेटेस्ट में उनका जो स्पेल बाउंड शो है अमेरिका में एकदम कमाल कर रहा है, सारे इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर वो लोगों को हैरान कर रही है, और इंडियन न्यूज एंकर से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर तक, यानी कि विदेशों में भी बैठे बैठे लोग पागल हैं। हाउ कैन यू डू इट, हाउ आर यू एबल टू रीड माय माइंड। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि सुहानी जो कर रही है ना, उससे देखने के लिए, महसूस करने के लिए, रूबरू होकर देखने का एक मौका आपके पास हम लाए हैं, जहां पर आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है जाकर कतर, यस कतर के किसी भी लीडिंग प्लेटफॉर्म टिकटिंग पर, जहां पर एससीटी सुनू पर आपको 30 कतर रियाल का कैशबैक मिला, क्यू टिकट्स, प्लेटिनम लिस्ट, हर जगह ये टिकट्स अवेलेबल है, सब जगह अलग अलग ऑफर्स है। जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए, अपनी टिकट्स अर्ली बर्ड में बुक कर लीजिए एंड उसके बाद अपने आप को इस सुहानी शाम के लिए फिक्स कर लीजिए, क्योंकि ना यहां पर सिर्फ सुहानी नहीं है, इसके महफिल में चार चांद लगाने सिंगर चरण एंड डांसर आशि भी आ रहे हैं। तो ये सब कुछ होने जा रहा है हमारे कतर में, इंतजार किस बात का कर रहे हो? देखा हो आपने हजारों दफा बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट, लेकिन ये अलग है। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: साज भट्ट सुबोध शर्मा की आवाज में तेरा मेरा रिश्ता पुराना और हमारा आपका भी
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे भाई मोर देन 5.5 ईयर्स हो गए हमें यहाँ कतर में रहे आपसे इतनी बातें करते करते। फिलहाल घड़ी का टाइम बता दें, शाम के 7:04 होने को आ गए।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आ गया अपने सपनों को सच करने का वक्त आ गया। 89.6 मिर्ची 1 पर मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट एंड इस्लामिक अफेयर्स ने अनाउंस कर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स जो हज 2027 का हिस्सा बनना चाहते हैं, साल 2027 में हज करने जाना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खुला है। यस, सितंबर 20th संडे से ये शुरू होगा और अक्टूबर 20th ऑलमोस्ट एक महीना हज पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस, रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स दोनों के लिए खुल जाएगा 20th of September to October 20th। वो टाइम जब हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले की इबादत में टाइम निकालेंगे और हज पर जाकर हाजी बनेंगे। लेकिन इस बार का कोटा 4400 पिलग्रिम्स का है, यानी कि हज यात्री सिर्फ 4400 हैं और आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी पहला स्टेप है जो एप्लीकेंट्स को देना ही देना है। एंड इसके अलावा आप हेल्थ सेंटर्स पर जाकर मेडिकल असेसमेंट कराकर जो इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड आएगा उसमें से आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो जाकर सबमिट करनी है। एंड याद रखिए, रेसिडेंट्स एंड जीसीसी सिटीजंस कम से कम 45 ईयर ओल्ड होने चाहिए एंड इससे पहले कभी हज परफॉर्म करने नहीं गए हो। और तो और, अगर आप कंटिन्यूअस रेसिडेंट हैं इन कतर फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स तो एक और कंपेनियन आपके साथ जरूर ऐड हो जाएगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता लग जाएगा, लेकिन दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके पास वो मौका है जब आप ऊपर वाले की इबादत के लिए जाएंगे एंड हम सब के भी दुआएं कर आएंगे। चलिए जी, इस उम्मीद से कि आप अगली हज यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और मस्मोला गौरव ने अपनी तरफ से थोड़ा नेकी का काम किया, आगे बढ़ते हैं। दुआ में याद रखिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Yabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ू को
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट ये पटाक
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

नहीं नहीं आज तो सर आए नहीं, आप ऐसा करिए कल अपना लेके आइए वाला पेपर, देखते हैं क्या हो सकता है। और इस चक्कर में कल परसों करते करते आपने सरकारी बिल्डिंगों में न जाने अपनी कितनी चप्पल घिसवा दी होगी। ऐसा बहुत बार होता था कि आपका छोटा सा काम कम से कम 10-15 बार बाबू के चक्कर लगाने के बाद होता था, लेकिन डिजिटल दुनिया में चीजें बदल रही है और हमारे कतर में तो ये अब बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही है। एंड एकदम काम की खबर हम आपके पास लेकर आए हैं। अगर आप पेट लवर हैं या फिर एनिमल बिजनेस से जुड़े हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने आपके लिए चीजें और आसान कर दी है। एक दो नई पूरी 38 नई सर्विसेज को अपने उन ऐप में शामिल कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने। हाँ जी, अब इससे क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है, सब कुछ डिजिटल और सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप बाहर से कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, फाल्कन्स या फिर रेसिंग कैमल्स लाना चाहते हैं तो उनका इंपोर्ट परमिट अब आपको उन ऐप पे मिल जाएगा। इतने नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक टेबल एग्स, ऑर्नामेंटल फिश, वाइल्ड बर्ड्स, इन सब का परमिट भी आपको अब एक क्लिक पर मिल जाने वाला है। और सिर्फ इंपोर्ट नहीं सर, एक्सपोर्ट के लिए भी जो वेटनरी हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता ना, वो भी अब आपको इसी उन ऐप पे मिल जाएगा। पहले जिसके लिए आप ऑफिसेस के चक्कर लगाते थे, इंतजार करते थे कि कोई बाबू साहब आए हमारा काम कर दे, अब वही काम आपके फोन पर एक बार में घर बैठे बैठे हो जाएगा और जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाए आपका काम डन। तो अगर अब आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए तो ऊन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ना इसमें एक और बड़ा फायदा होता है। अगर आपको कतर के किसी भी पार्क में जाना है जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी फीस लेती है, वो हो सकता है आप पार्क्स में लगे उस बारबेक्यू एरिया को भी बुक कर सकते हैं इसी ऑन ऐप के जरिए। तो जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डिजिटलाइज होती इस दुनिया का हिस्सा बन जाइए, जहां एक क्लिक पर सारा काम होता है, चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अरे मामा, बकलावा कुनाफा बटवाओ, ये तो खुशखबरी है। हबीबी गुल्लक, ध्यान से सुनिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अर्ज कर दिया है और हमसे कहा है कि एक्सटेंड करना चाहते हैं अगर आप ऑन अराइवल वीजा, रिन्यू करना चाहते हैं अगर आप ऑन अराइवल वीजा, तो अब आप इसके लिए बिल्कुल जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट या सर्विस सेंटर्स पे मत जाइए, ये सब वेबसाइट पे हो जाएगा। Yes, मिनिस्ट्री ने कहा है कि वीजा एक्सटेंशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा, कुछ MOI की वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, एंड उसके बाद आपका आसानी से काम हो जाएगा एंड आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपको रिन्यू कराना है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए MOI.gov.qa पे जाना है, उसके बाद इंक्वायरीज को सेलेक्ट करना है, फिर वीजा सर्विसेज को और वीजा एक्सटेंशन फॉलोड बाय इंक्वायरी एंड एक्सटेंशन, बस ये प्रोसेस और आपका काम पूरा। यस, इसमें आपको जो डिटेल्स भरनी है वो ध्यान से भरिएगा, एंड इतना समझ लीजिए कि जिसके लिए पहले चक्कर लगाएंग होता था वो अब आपके लिए ऑनलाइन बैठे बैठे काम हो जाएगा, एंड जो भी फीस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली पे कर देनी है, एंड सारा कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस आप इंतजार कीजिए और जैसे ही आपका वीजा रिन्यू हो जाएगा या फिर एक्सटेंड हो जाएगा आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ी आसानी की बात। हमारे वहां सबसे ज्यादा खुश इस बात से आफरीन होगी, मतलब आफरीन कहना, अक्सर ऐसा होता है कि उसके गेस्ट उसके रिश्तेदार आते रहते हैं तो वो बस हर बार चक्कर लगा रही थी, एक्सटेंशन कराने जा रही अब बैठे बैठे काम हो जाएगा। चलो जी, ये बधाई वाली बात तो है सर कि अब हमारे अभी जो रिलेटिव आ रहा है अगर ज्यादा दिन रोकना है तो रोक पाएंगे और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुनाफा खिलवाओ इस खबर पे, तो कोई हमें मिर्ची छोड़।

0: 맞춤가?
1: 미치 스토리즈 스토리즈
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: ओ छंडो

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

हार्डी संधू की आवाज में बिजली बिजली गाना खत्म हुआ और गर्मी गर्मी कैन हाय सब गर्मी गर्मी कैन होगा कल। दोस्तों सुहेल स्टार के फेस में तो हम एंटर कर गए हैं, लेकिन जाती गर्मी ज्यादा खतरनाक वाली फीलिंग दे रही है। कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया है यस कि जबरदस्त गर्मी एक्सपेक्ट कीजिए और ये गर्मी कल आपको 44 डिग्री सेल्सियस की मैक्सिमम मिलेगी। उस बीच ह्यूमिडिटी का जबरदस्त मिश्रण रहेगा और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपको लोकल क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से जो चिपचिपी वाली गर्मी है उसकी भी फीलिंग आएगी। इतना ही कहना चाहते हैं कि मतलब जबरदस्त वाली गर्मी का अभी आखिरी प्रकोप हमें झेलना है और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा पानी पी के सूरज चाचू को कोसना है कि चलो अब तो इतने दिन सह लिए, अब निकलो जल्दी जल्दी हमें अच्छे मौसम को दे जाओ ताकि हम भी कुछ इंजॉय कर पाए। वैसे इस उम्मीद के साथ कि इस वीकेंड भी आप गर्मी के कारण बीच पे आउटिंग नहीं कर पाए, बारबेक्यू पार्टीज अभी भी कैंसिल है और आपका बारबेक्यू घर के कोने में पड़ा यही सोच रहा है कब लेके चलोगे पिकनिक पे, इंतजार कर रहे हैं सबके सब कि मौसम बदले और सब कुछ ठीक हो जाए। होगा जी, बस इंतजार कीजिए, पानी पी पी कर सूरज चाचू को कोसते रहिए और मस्त मौला गौरव को फिलहाल कहिए टाटा बाय। मिलेंगे हबीबी कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में, तब तक के लिए मां सलामा मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
4: गाना इंडी टॉप 10
5: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में दो नई एंट्रीज हैं इस हफ्ते। हम अपना 90s एंड 2000 का कैसेट क्लासिक भी आपके लिए प्ले करने वाले हैं। All this and more at RJ Kanika on Instagram पर आकर stay connected with me। कोई गाना बताना है, सजेशन है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, बंजारी द आर्टिस्ट का गाना। गाने का नाम है बरसात। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव। गाने का नाम ही है बैंगर। दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
4: नंबर 10।

0: man.
1: Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओ टू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: your boy.
1: बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर. दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. एक गाने को बैंगर से वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से. इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर.
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
1: Hello, this is the Ghana Indie Top 10. Baddi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, follow kare, mera handle is @RJKanika. Koi gana share karna hai, baate batani hai, bindas aake hit me up. Pichle 6 saal se jitne gaane Badshah ke is show par debut karte hain, jo main aur aap sunna band nahi kar paate hain, un gaano mein ek naam common hota hai. Wo naam hai Hiten ka. हितेन इज द सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं. बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने किंग के साथ, एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करे हैं. तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं. बीट तो वही बना रहे हैं. उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस. एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट. साल 2017 में दैट क्रिंज पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टेबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया. वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे. बादशाह का गाना अवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट. This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं. उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोस देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर. पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं. साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे. दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी. सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं. बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स अ सॉन्ग बी. वो गाने को सांस लेने देते हैं एंड दैट्स व्हाई ही इज द चोजन प्रोड्यूसर फॉर बादशाह, किंग. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी इज व्हाट इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर. गाना संजू राठौर का है पर उसके प्रोड्यूसर हैं जी स्पार्क, जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी प्रोड्यूस किया था संजू के साथ. हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, संजू राठौर की आवाज में जी स्पार्क की प्रोडक्शन. गाने का नाम है बैंगल्स. 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Ghana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot. Number 6.

0: लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है।

0: अरूप खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल द हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. स्वागत है आपका। This is the गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना गुच्ची बाय अरूप खान, जिसको एक्चुअली हम सब ने इंस्टाग्राम से ही डिस्कवर किया है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज कि गाइस, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में ओनली बिकॉज ऑफ रवि किशन दिस सॉन्ग फाउंड इट्स मोमेंट। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने। वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है। एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट येस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस सवालों से गुजरे हैं। एंड वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज एपी टिल्लो। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वॉज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक एपी ने किसी भी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे। एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट। एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स द प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एपी टिल्लो का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैड वाइब, मैड सॉन्ग, गुरिंदर गिल, एपी टिल्लो, शिंदा कालो, जी माइनर का गाना, गाने का नाम है ब्राउन मुंडे. दिस वॉज अ बिगनिंग ऑफ मेनी ग्रेट थिंग्स फॉर पंजाबी म्यूजिक, जहाँ पे फीलिंग बहुत देसी है पर प्रोडक्शन बहुत इंटरनेशनल था. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन से अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन एज वेल. अनीश सरकार, हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. एक फोक मेलेडी को इतनी ऊबर कूल प्रोडक्शन में पैकेज किया है. पिछले हफ्ते से दो पोजिशन ऊपर जम्प करके उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फैमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल्ड डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वाज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम, ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर, दूसरी तरफ वी हैव गॉट लेस्ली लुइस हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ऑ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ, इट स्टिल साउंड्स सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है। क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कहने को ये गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में also I can say that it is one of the most experimental pop sounds out there. Hariharan ji and Leslie Lewis sir ki awaaz mein, that was Sani Dhapa by Colonial Cousins on our Cassette Classic this week. At RJ Cunning on Instagram par aon, batao mujhe yaar 90s 2000s ke yehi wale gaane which still makes us feel like indie pop ka golden era to 90s and 2000s mein tha. Which is your favorite? मुझे आके बताओ. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
5: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
4: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल,
3: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
6: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों में दो नई एंट्रीज थी। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
7: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा जाएगी।
6: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई, बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौड़ का बैंगल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक वॉज ऑन गाना नंबर 8। कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट। फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक, तारे वाज ऑन गाना नंबर 7। अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू, एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
7: रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल।
6: मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एंड इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं, बिकॉज काफी रीशफल हुआ है। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन। हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन, ये गाना एक पोजीशन ऊपर जंप मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ OTT रिलीज। गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक। दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग। दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। तो ये दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन नंबर 2 पे है, फिर दरमिया नंबर 1 पे, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
3: नंबर 2।

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Mirchi helpline.
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
3: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

मोहिनी मोहिनी मोहिनी, पूरा एयरपोर्ट बस इसी आवाज से गूंज उठा था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। तो देखो, मुझे पता है कि पूरे दिन की थकावट अगर तुम्हें मिटानी है ना, तो बस यहाँ पे आने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है दीज एवरग्रीन रेट्रो सॉन्ग्स। और ऑफ कोर्स इन गानों के पीछे की कहानियां, उस रेट्रो जमाने की फिल्मों के पीछे की कहानियां। तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके आती हूँ। आज जब मैं ये कह रही हूँ मोहिनी मोहिनी, तो बताओ कौन सी फिल्म पे एकदम रिसर्च करके आई है श्रेया। फुल होमवर्क, एब्सोल्युटली करेक्टली एप्टली डन। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, कुछ गानों के उस पर जब मैं मिलूंगी तब बताती हूँ, तब तक सोचते रहो, फिर से रिपीट करती हूँ मोहिनी मोहिनी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया, आवाज़ साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज़
4: साहब? आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।
4: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
3: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार। हेलो
4: हेलो हेलो
3: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही आवाज़?
4: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
3: हाँ जी।
4: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
3: अच्छा अच्छा।

0: मैं तो ये ड्रिल मशीन यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: अरे क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
0: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
0: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने के लिए गया वाले।
0: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
0: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया।
0: बात सुन।
1: हेलो
0: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था। आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं। आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
0: अब ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
7: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मोहिनी मोहिनी एक ऐसी फिल्म जिसके पहले माधुरी दीक्षित ने भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया की नंबर वन हीरोइन बन जाएंगी आफ्टर डूइंग दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जैसे ही मैं मोहिनी मोहिनी कहती हूँ तो ऑफकोर्स आपको याद आ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल आज बात करेंगे फिल्म तेजाब की। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित वाज कास्ट ऑपोजिट अनिल कपूर। इस फिल्म में एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स थे, चंकी पांडे थे, किरण कुमार थे, सुरेश ओबेरॉय थे, ऑफकोर्स अन्नू कपूर प्लेड अ वाइटल रोल, और माधुरी दीक्षित ने तब तक कुछ खास कदम नहीं जमाए थे और उनको लगा था कि वो इतने सारे स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं खो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन दो द रोल वॉज इन दैट ग्रेट दैट शी गॉट, लेकिन द सॉन्ग दैट शी गॉट वॉज 1 2 3। कहिए क्या सुनेंगे आप? ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि कहते हैं कि जिस कंपनी ने कैसेट्स रिलीज किए थे, दी ऑडियो कैसेट्स, उस समय यू नो कैसेट्स ही चला करते थे, तो उस कंपनी को बार बार लॉट में नए कैसेट्स का बैच रिलीज करना पड़ रहा था, बनाना पड़ रहा था, बिकॉज खत्म होते जा रहे थे मार्केट में। हाँ जी, सो तेजाब का ये वाला गाना भी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: The show was absolutely amazing.
2: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: क्या कहा?

अच्छा, किस किस को शाहरुख खान का मन्नत अंदर से देखना है? देखना है तो चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। आज जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है तेजाब। 1988 की ये फिल्म थी। उसके बाद ना जब ये फिल्म रिलीज हुई तो 1990 तक आते आते माधुरी दीक्षित बिकेम द नंबर वन हीरोइन ऑफ इंडिया। वेल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मन्नत की बात कर रहे थे हम। देखना है तो आपको ये फिल्म फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि शायद जब ये फिल्म बनी तो आपको नहीं पता होगा। इस फिल्म में अनुपम खेर का जो बंगलो दिखाया गया है और उसके शॉट लिए गए हैं, वो बंगलो अंदर से भी दिखाया गया है, बाहर से भी दिखाया गया है, वो है शाहरुख खान का मन्नत। आई एम श्योर अब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारा रेनोवेशन हो गया होगा, बट यही वो बंगलो है जो कि शाहरुख खान ने खरीदा था। यस, सो इन केस यू वांट टू हैव अ लुक, आपको तेजाब फिर से देखनी पड़ेगी। अनुपम खेर वाला घर आपको अब पता है ना कि शाहरुख खान का मन्नत है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: स्टार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स।

वेटर इतना घबरा गया था कि उसने एम्बुलेंस बुलाई, और मैनेजर इतना घबरा गया था होटल का कि उसने तो सीधे पुलिस बुला ली थी। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टुडे तेजाब। अब हुआ ये कि गाना है ना सो गया ये जहां, इस गाने से पहले राइट बिफोर द सॉन्ग देयर वाज अ फाइट सीक्वेंस दैट वाज शॉट। अब ये फाइट सीक्वेंस शूट हो गया, लेकिन भाई एक्टर्स ये भूल गए, जैसे कि चंकी पांडे, अनिल कपूर एंड ऑल ऑफ देम, कि उन्होंने ना मेकअप नहीं उतारा। रात का समय था, ये गाना शूट हो रहा था, गाड़ी में उन्हें इतनी भूख लगी कि पास के एक होटल में चले गए। होटल वाले देख करके घबरा गए कि ये क्या खून से लदे पदे, एकदम खून ही खून हर जगह दिख रहा है, ये लोग कौन आए हैं। तो जो वेटर था वो इतना घबराया, उसने एम्बुलेंस बुला ली कि भाई इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और जो मैनेजर था उसने तो पुलिस को बुला लिया कि हाँ कोई ऐसा वैसा केस तो नहीं है। बाद में उनको बताया गया कि अरे भाई हमने मेकअप रिमूव नहीं किया है, हम सीधे सेट से आ रहे हैं। अब इस गाने की बात हुई है तो ये गाना थोड़ी देर में सुनाती हूँ। मजा आता है मुझे आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। कम राइट बैक, दिस इज श्रेया ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती, क्या करूं?
2: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
3: साले का खोपड़ी तोड़ साले का।

दो फिल्में अनाउंस तो हुई लेकिन वो कभी भी बनी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, शायद ये तरीका था टीनू आनंद का डिंपल कपाटिया को ट्रिक करने का। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड शहनशाह फिल्म की बात हो रही है जिसपे अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म की कहानी लिखने वाली थी जया बच्चन जी। अमिताभ बच्चन एक अरसे के बाद इंडस्ट्री में वापस आ रहे थे, पॉलिटिक्स उन्होंने तब ज्वाइन कर लिया था और इसीलिए वो फिल्में कर नहीं रहे थे। बट फाइनली पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कह करके, यू टर्न मार करके फिल्में करने जब वो वापस आए तो शहनशाह वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसका ऑफर उन्हें मिला था। अब ऐसे में डिम्पल कपाटिया के पास ऑलरेडी ऑफर जा चुका था, उनके पास साइनिंग अमाउंट जा चुका था टू प्ले द लीड इन दिस कैरेक्टर, एज इन टू प्ले द लीड फीमेल। फिर क्या हुआ, मीनाक्षी शेषाद्री को रातों रात उनके जगह पे रिप्लेस किया गया। अब टीनू आनंद जो ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो चाहते थे कि डिंपल कपाटिया अपना साइनिंग अमाउंट वापस दे, लेकिन डिंपल कपाटिया का कहना था कि मैं तो फिल्म छोड़ के नहीं जा रही हूँ, आपने मुझे रिप्लेस किया है तो मैं क्यों वापस करूं। ये कंट्रोवर्सी उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने जम करके छापी थी। सो टीनू आनंद ने एक कंडीशन रखी, ही सेड कि अगर वो उनका साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वो अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ दो और फिल्में विद डिंपल कपाटिया अनाउंस करेंगे। अब डिंपल ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद बच्चन साहब, उनके लिए ये इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था कि उन्होंने हाँ कहा, पैसे वापस दिए और अगले दिन टीनू आनंद ने दो फिल्में अनाउंस भी करी। ये जो दो फिल्में थी उनका नाम था महाकाल और एक का नाम था आलीशान, पर ये दोनों फिल्में कभी बनी नहीं। इसीलिए डिंपल ऑलवेज फेल्ट कि टीनू आनंद ने चीटिंग की, जो कि एक्चुअली में की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: The show was absolutely amazing.
2: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: तीन शहर और 17 दिन एक गाने को शूट करने में लग गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म तेजाब। वेल, इस फिल्म का सारा होमवर्क करके लाई हूँ मैं, और जब मैं रिसर्च कर रही थी ना तो मुझे पता चला कि ये वाला गाना, ये जो आप सुन रहे हो ना, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग विच इज़ बाई नितिन मुकेश, क्या हमिंग है। वेल, ये गाना जो अलका याग्निक के साथ उन्होंने गाया, इस गाने को क्योंकि पूरा रात में शूट किया जा रहा था, हाँ, कि टीम बैठी हुई, एज इन द एक्टर्स बैठे हुए हैं गाड़ी में, और वो रातों रात एक गाड़ी में बैठ करके रास्ता कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने 3 सिटीज़ को क्रॉस किया था और 17 रातें लगी थी टू शूट दिस आइकॉनिक सॉन्ग।
1: सो गया है रास्ता।
0: आई नो, मुझे पता है कि आपको ये गाना पूरा सुनना, तो ये लो पूरा, कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना। पक्का इस बार, पक्का प्रॉमिस, बस 3 गानों के उस पर कमेंट।

we call them here?

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
5: दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

फिल्म फेयर में ये कैटेगरी इस गाने के बाद शुरू हुई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म तेजाब। वेल, ये जो गाना था, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ और इसमें एक्ट्रेस का जो डांस मूव्स थे वो एवरीबडी वाज कॉपिंग इन द एंटायर कंट्री। वो इतनी पॉपुलर हुई कि फिल्म फेयर की कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई इस कैटेगरी का अवार्ड भी होना चाहिए हमारे पास। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोज खान। सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तेजाब मूवी का ये गाना, और माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस ओहो चुम्मेश्वरी था। वेल, आफ्टर दिस सॉन्ग बिकेम सो ह्यूज एंड इट गॉट सो पॉपुलर कि उसके बाद फिल्म फेयर ने ये डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया कि ये कैटेगरी यानी बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी होना चाहिए। एंड देन ऑफकोर्स सरोज खान ये अवार्ड लेने वाली पहली कोरियोग्राफर बनी थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। यही वाला गाना सुनना है तो सुनाती हूँ ना? पक्का, इस बार पक्का, प्रॉमिस। बस 3 गानों के उस पर। कम राइट बैक।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 मिर्ची।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: अच्छा, कभी कभी ना फिल्म इतनी एंग्रॉसिंग होती है, इतनी एंगेजिंग होती है कि समटाइम्स ना लोग बहुत ऑब्वियस से सवाल भी नहीं पूछते। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज तेजाब फिल्म की बात हो रही है। तो क्या हुआ, अगर आप तेजाब देखोगे ना तो ब्रेक के पहले तक बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें नाना पाटेकर का सीन है, एज इन नाना पाटेकर ने शॉट किए हैं वो सीन्स, आपको दिखेंगे कुछ एकदम वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। लेकिन ब्रेक के बाद सडनली नाना पाटेकर का कैरेक्टर ही गायब हो जाता है। लेकिन फिल्म इतनी इतनी मज़ेदार थी, इतनी अच्छी थी, बॉलीवुड का सारा तड़का उसमें लगा हुआ था कि लोगों ने यह सवाल किया ही नहीं कि अरे भाई नाना पाटेकर का हुआ क्या। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। चुप कर ऐसा तूने।
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को। बेटे
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अनिल कपूर की तेजाब मूवी को लेकर के। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ 50 वीक्स तक 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पे राज किया था इस फिल्म तेजाब ने। अब हुआ क्या, तेजाब जब बन रही थी अनिल कपूर के पास डेट सी नहीं थी, ही वॉज बुक फॉर 2 ईयर्स। अब ये जो फिल्म की कहानी थी ना, ये कहानी एन चंदर ने बोनी कपूर को सुना दी। बोनी कपूर जो कि अपने भाई को लॉन्च कर रहे थे, अपने भाई के लिए अच्छी फिल्में देख रहे थे, उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये फिल्म तगड़ी होने वाली है। सो उन्होंने अनिल कपूर से कहा कि भाई ये फिल्म कर लो, लेकिन अनिल कपूर ने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये फिल्म। सो देन बोनी कपूर स्टेप्ड इन एंड ही टोल्ड डायरेक्टर एन चंदर कि एक काम करना, जिस भी दिन अनिल की कोई फिल्म की शूटिंग कैंसिल होगी वो दिन तेजाब का होगा। सो ऐसे करते करते अनिल कपूर के कई सारे शूट जो कैंसिल होते थे, अनिल कपूर चले जाते थे

तेजाब के सेट पर, एंड दिस वॉज हाउ तेजाब वॉज मेड। इमेजिन, इतनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म, वो एक्चुअली में अनिल कपूर की, क्या बोलूं मैं, वो कैंसिल डेट्स पे बनी थी। कभी कभी हमें नहीं पता होता ना कि हम किसी चीज़ के लिए जिसके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं वो काम करेगी, या फिर जिसको बहुत कैजुअली ले लिया वो काम करेगी। पुरानी जीन्स पे श्रेया है आपके साथ, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अनु कपूर जी को अनिल कपूर का चेक मिल गया था पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज अनु कपूर का असली नाम अनिल कपूर था। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, एंड अनिल कपूर इस फिल्म के मेन लीड में थे और अनु कपूर फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर थे। अब क्योंकि अनु कपूर का रियल नाम असली नाम अनिल कपूर था तो उनको ना अनिल कपूर का साइनिंग अमाउंट चेक पे मिल गया था। पहले तो उनको फिगर्स देख के यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, एंड देन ही रियलाइज कि ओ हो, ये तो अनिल कपूर का चेक आ गया मेरे पास। वेल, आज तेजाब की बातें श्रेया के साथ चलती रहेंगी, कहीं मत जाना। गानों के उस पार फटाक से मिलो, आज तो हाईवे पे चलेंगे ना फिर।
1: हम्म।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
4: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर, बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर। एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स, मेकिंग एवरीबडी लाफ।
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
0: 89.6, 89.6. Mirchi. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जींस पे श्रेया है आपके साथ, जाने का टाइम हो गया है तो गड्डी में बैठो, लेट्स हिट द हाईवे। अच्छा, आज का मेरा हाईवे हिट उन पे है जिनकी लाइफ में वो ड्रीम गर्ल आ चुकी है। आई वो ड्रीम गर्ल जो किसी शायर की गजल होती है, झील क्या कमल होती है,
1: दिल में मोहब्बत है।
0: अगर ऐसी ड्रीम गर्ल है तुम्हारे पास तो उसे जरा करीब रखो, समझे, थोड़ी बहुत उसकी बात मान लिया करो यार। On that note, this is Shreyas signing off. I will see you tomorrow. Khayal rakho apna. Good night.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

हॉट है। ये था गुची संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर।

89.6 Mirchi One. It's hot.